और एक निशानी इनके लिए यह है कि हमने इनकी औलाद को भरी हुई कश्ती में सवार किया और इनके लिए वैसी ही और चीजें पैदा की जिन पर ये सवार होती हैं, और अगर हम चाहें तो इनको गर्क कर दें, फिर न तो इनका कोई फरियाद रस हो और न इनको रिहाई मिले, मगर ये हमारी रहमत और एक मुद्दत तक के फायदे हैं।

और जब इनसे कहा जाता है कि जो तुम्हारे आगे और जो तुम्हारे पीछे है उससे डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए, और इनके पास इनके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी नहीं आती मगर उससे मुंह फेर लेते हैं, और जब इनसे कहा जाता है कि जो रिस्क अल्लाह ने तुमको दिया है उसमें से खर्च करो, तो काफिर मोमिनों के मुतालिक कहते हैं कि भला हम उन लोगों को खाना खिलाएं जिनको अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिला देता, तुम तो खुली

क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने उसको नुतफे से पैदा किया, फिर वो तड़ाक पड़ाक झगड़ने लगा और हमारे बारे में मिसालें बयान करने लगा और अपनी पैदाइश को भूल गया। कहने लगा कि जब हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी तो इनको कौन जिंदा करेगा। कह दो कि इनको वो जिंदा करेगा जिसने इनको पहली बार पैदा किया था और वो हर तरह की तखलीक को जानता है, वही जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग पैदा की, फिर तुम उसकी टहनियों को रगड़कर उनसे आग निकालते हो। भला जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, क्या वो इस बात पर कादिर नहीं कि इनको फिर वैसे ही पैदा कर दे? क्यों नहीं, और वो तो सब कुछ पैदा करने वाला कामिल इल्म वाला है।

हाँ, जो कोई फरिश्तों की किसी बात को चोरी से झपट लेना चाहता है तो जलता हुआ अंगारा उसके पीछे लग जाता है। तो इनसे पूछो कि इनका बनाना मुश्किल है या जितनी खलकत हमने बनाई है उसका। इन्हें हमने चिपकने वाले गारे से बनाया है। हाँ, तुम तो ताज्जुब करते हो और ये मजाक उड़ाते हैं, और जब इनको नसीहत की जाती है तो नसीहत कबूल नहीं करते, और जब कोई निशानी देखते हैं तो ठट्ठे करते हैं और कहते हैं कि ये तो खुला जादू है।

और उनको ठहराए रखो कि उनसे कुछ पूछना है। तुमको क्या हुआ कि एक दूसरे की मदद नहीं करते? असल बात यह है कि आज ये लोग अपनी गलती तस्लीम कर रहे हैं और वो एक दूसरे की तरफ रुख करके सवाल और जवाब करेंगे। पैरोकार अपने पेशवाओं से कहेंगे कि तुम ही हमारे पास दाईं तरफ से आते थे। वो कहेंगे, नहीं बल्कि तुम ही ईमान लाने वाले न थे और हमारा तुम पर कुछ जोर न था बल्कि तुम ही सरकश लोग थे। सो हमारे बारे में हमारे परवरदिगार की बात पूरी हो गई कि अब हम अजाब के मजे चखेंगे।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: शहर अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6
2: It's 9 AM. This time check is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
4: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
5: Security lai Chinese suban khan 17,000 khan wadhi ka police ahlkar mukarrar.

आजाद कश्मीर में थींदड़ एहतजाजन पुठियां भारत जो हथ निकतो। शहर पसंदनि खे भारतीय फंडिंग जा सबूत साम्हूं अची विया। हिकु ॼणो गिरफ़्तार। सुध समा वारे वफ़ाकी वज़ीर अता तारड़ चयो आहे त ग़लति ॼाण पखेड़ींदड़ समूरी नेटवर्क जो तालुक भारत सां आहे। साज़िशी अंसरनि कश्मीर जो पाकिस्तान सां रिश्तो कमज़ोर करण जी नाकाम कोशिश कई। पाबंदी मढ़ियल जमायत जो चूंडनि में हिसो न वठण भारत नवाज़ हुअण जो सबूत आहे। जथन ऐं कानून हथ में खणंदड़नि खे सोशल मीडिया ज़रिए हथी ॾिनी वई। पाकिस्तान ऐं पाकिस्तानी एजेंसियुनि बाबति गुमराह कंदड़ प्रोपोगेंडा कई वई। कश्मीर में लफेड़ पखेड़ण जूं नाकाम कोशिशूं कयूं वयूं।

अमेरिकी ऐं इसराइली ॾांहुं ख़िलाफ़ मज़ाहमत खां सवाइ ॿियो को बि रस्तो बाक़ी न बचियो आहे। हिज़बुल्लाह जी जिदोजहद दुनिया जे आज़ाद क़ौमनि लाइ हिकु मुतासिर कंदड़ पैगाम बणिजी वई। लबनान ख़िलाफ़ इसराइली हुकूमत जे जाहिरियत जो गैर मशरूत ख़ात्मो अमेरिका सां थियल मुआहिदे जी हिकु बुनियादी शर्त आहे। ईरान जे सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामना हिज़बुल्लाह पारां वफ़ादारी जे अज़म लाइ लिखियल ख़त जो जवाब में चयो आहे त ईरान मज़लूम पर ताक़तवर हिज़बुल्लाह मुजाहिदीन जे दिफ़ा खे पंहिंजो फ़र्ज़ समझे थो ऐं ईरान हिज़बुल्लाह सां पंहिंजो स्ट्रेटजिक सहारो जारी रखंदो। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी जे डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो गोर्सी चयो त नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सां टेलीफोनिक राब्तो खिते जी ताज़ी सूरतहाल इलाक़ाई ऐं आलमी अमुन तोड़े इस्तक़ाम खे हथी वठण लाइ सिफारतकारी ऐं तामीरी राब्ता जारी रखण ते डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो गोर्सी चयो त इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त बाद उमीद आहे त धुरियूं ॻाल्हियूं ऐं राब्ते जो अमल जारी रखंदियूं छाकाणि त पुरअमन ऐं पायदार हल ताईं पहुचण लाइ ॻाल्हियूं इंतिहाई ज़रूरी आहिनि। डायरेक्टर जनरल गोर्सी डिप्टी वज़ीर आज़म खे गॾियल क़ौमन जे सेक्रेटरी जनरल जे उहिदे लाइ पंहिंजे उमेदवार बाबति आगाह कयो। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार गॾियल क़ौमन हिकु मुअसर घण तरफ़ी निज़ाम लाइ पाकिस्तान जे मज़बूत हिमायत जो वर्जाउ पिण कयो। ईरान ते हमलनि में शिदत वारे मामले ते अमेरिकी क़यादत इख़्तिलाफ़नि जो शिकार। नायब सदर जे डी वेनस ऐं फ़ौजी सरबराह डीन केन ईरान ख़िलाफ़ जंग में शिदत ते ख़दशनि खां सदर ट्रम्प खे आगाह करे छॾियो। CNN मूजिबि जनरल डीन केन आला सतही इजलास में सदर ट्रम्प खे ईरान ख़िलाफ़ इम्कानी फ़ौजी कार्रवाइयुनि बाबति नतीजनि ऐं ख़तरनि खां आगाह कयो। हथियारनि जे ज़खीरनि में घटिताई ऐं ॿियनि चैलेंजेस बाबति बि ख़दशा रखिया। नायब सदर जे डी वेनस बि ख़िते में एतिहादनि जे ख़दशनि बाबति सदर खे आगाही ॾिनी।

मिठियूं ॻाल्हियूं कंदड़ सभु मकार ॾिठमि। मिठियूं ॻाल्हियूं कंदड़ सभु मकार ॾिठमि। कड़ियूं ॻाल्हियूं कंदड़ वॾा कंधार ॾिठमि। ॻाल्हि मुश्किल आहे समुझण में सुणा साईं, अछनि उजरनि लिबासनि में वॾा गदार ॾिठमि। अस्सलाम वालेकुम समिन, GFM 88.8 लाड़काणे जे लाइव स्टूडियो मां प्रोग्राम रोशन सुबुह साण करे अव्हां जो पंहिंजो मेज़बान नेमतुल्लाह जूणे जो अव्हां जी ख़िदमत में हाज़ुर ऐं क़बूल पवे सिक भरियो सलाम। जी समिन, कहिड़ा अव्हां जा ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो, चाक चङा भला। असांजी हर पल हमेशह अव्हां प्यारनि सजणनि लाइ इहा दुआ हूंदी आहे त जिते बि हुजो ख़ुशि हुजो, कॾहिं ॾुखियो ॾींहुं न ॾिसो ऐं सदाई गुलाब जे गुलनि जीअं खिलंदा मुस्कराईंदा रहो। आमीन। साईं, मुंहिंजा असुल ॻाल्हि इहा आहे त चवंदा आहिनि त सिजु त उभरियो आहे, पोइ हू कीअं था चवनि त मोहबत नाहे रही। लफ़्ज़ माण्हूअ जा ग़ुलाम हूंदा आहिनि, पर ॻाल्हाइण खां पहिरियां, ॻाल्हाइण खां पोइ माण्हू लफ़्ज़नि जो ग़ुलाम थी वेंदो आहे। जेको अव्हां खे ॾुख ॾे उन खे छॾे ॾियो, पर जंहिंखे तव्हां छॾे ॾियो उन खे ॾुख हरगिज़ न ॾियो। ॾींहं जी रोशनी में रिज़क तलाश कयो ऐं राति जो वरी उन खे तलाश कयो जेको तव्हां खे रिज़क ॾींदो आहे। जेकॾहिं तव्हां अल्लाह पाक जी इबादत नथा कयो त पोइ गुनाह बि न कयो। पंहिंजी मुस्कराहट सां कंहिंजी दिलि खटणु सबबु अज़ीम कारनामो आहे, त पंहिंजी मोहबत पंहिंजी मुर्क सां कंहिंजी दिलि खटो त ऐं सिज त मोहबत ज़रूरु आहे। तंहिं करे इन मोहबत खे क़ाइमु ऐं दाइमु रखो।

साईं मुंहिंजा आम तौर ते चयो वेंदो आहे त सुहिणी सूरत खां सुहिणी सीरत भली, जंहिंजो मतिलबु आहे त सीरत खां सवाइ सूरत कंहिं बि कम जी न आहे। सूरत त सिर्फ़ ज़ाहिरी ॾेख आहे, तंहिं करे ज़ाहिरी ॾेखो का बि अहमियत कोन थो रखे। चवंदा आहिनि त सुहिणा ट्रूह पटनि ते पधरा, ऐं ट्रूह ॿाहिरां ॾिसण में त निहायत ई सुहिणा हूंदा आहिनि, पर अंदरां कौड़ा जहिड़ो वेह। उन करे खेसि कोई बि गौर सां ट्रूह खे नथो ॾिसे ऐं न वरी को उन खे चखे। इंसान जो बि साॻियो हाल आहे, जेकॾहिं उन जी सूरत सुठी हूंदी ऐं सीरत सुठी न हूंदी त उहो माण्हू बि उन ट्रूह में सलाहे। तंहिं करे असांखे पंहिंजी सूरत सां गॾु सीरत बि संवारणु घुर्जे, जीअं हर को माण्हू असांजे किरदार जी साराह करे ऐं हुन जी दिलि पई हमेशा चाहे त उन सुहिणे माण्हूअ जी, उन सीरत सुठी वारे माण्हूअ जी पियो रोज़ दीदार कजे।

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی ایف ایم،
2: اپنا شہر اپنا گھر، مٹیاری اور مٹیاری کی آواز
3: جی ایف ایم 91.6۔
4: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by
5: Manas. क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
6: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनर्जेसिक क्रीम,
5: कुदरती अज्जा से तैयार करदा
6: ये मुआसर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
5: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
6: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
5: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
6: गर्दन और कंधों के दर्द
5: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
6: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
5: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
6: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द सोजन वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
7: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
8: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
9: yeah!

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

जी साईं, मुंहिंजा प्रोग्राम रोशन सुबुह में वापसि अची चुका आहियूं ऐं अव्हां खे ॿुधाईंदो रहां त प्रोग्राम रोशन सुबुह ॿुधो पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां।

जी साईं जा प्रोग्राम रोशन सुबह अवां बुद्ध पे जीएफएम 88 जे नेटवर्क ता जिवें सखर लाड़काणा मीरपुर खास मोरो मेरापुर सकरंड मतियारी मातली स्टेशन ता साईं जा अवां के बुधाईंदो हलां त अॼु सूमर जो ॾींहुं आहे जुलाई महीने जी 27 तारीख़ ऐं सफ़र अल मुज़फ़र जी 12 तारीख़ आहे 1448 हिजरी सन। ऐं साईं मुंहिंजा अव्हां खां अॼु को बि सवाल कोन्हे, का बि गुजरात कोन्हे। तव्हां पंहिंजा नाला असां ॾे मोकिले सघो था फेसबुक जी आई डी ते, जीएफएम 88 जी जेका आई डी आहे फेसबुक जी, उन पेज ते तव्हां पंहिंजा नाला मोकिले सघो था। ऐं साईं मुंहिंजा तव्हां पंहिंजा नाला मोकिले सघो था असां ॾे इनबॉक्स में मैसेज में। इनबॉक्स मैसेज में पंहिंजो नालनि मोकिलण जो आसान तरीक़ो आहे, मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदो, उते पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ नालो लिखी करे 888 ते तव्हां सेंड कंदो असां ॾे। ऐं तव्हां असांजे मोबाइल नंबर ते बि तव्हां पंहिंजा नाला पंहिंजो ॻोठ नालो लिखाए सघो था। असांजो स्टूडियो जी जेका मोबाइल आन थींदी 10 बजे, तव्हां हुन ते पंहिंजा नाला लिखाए सघो था। असांजो नंबर आहे 0332132288। जी साईं मुंहिंजा का बि गुज़ारत कोन्हे, को बि सवाल कोन्हे को, ऐं तव्हां खे बहितरीन मूसीकी जा आइटम अव्हां खे ॿुधाईंदासीं। चूंड मूसीकी हूंदी ऐं तव्हां सां जेके ॻाल्हियूं कंदासीं तमामु बहितरीन ऐं वणंदड़ ॻाल्हियूं हूंदियूं। सो कार्यम जो असांजो तव्हांजो साथ रहंदो ठीकु 11 वॻे ताईं। ऐं हिन वक़्तु वरी असां तव्हांखे ख़ूबसूरत मौसीकी ॿुधाईंदासीं, पर हुन खां अॻु में कुझु ॻाल्हि। त साईं मुंहिंजा असांजो हमेशह कंहिं न कंहिं इंसान ते, कंहिं न कंहिं माण्हू ते एतबार हूंदो आहे, पर बेएतबारी जे बुनियाद ते क़ाइमु कयल एतबार, धोके ऐं तलबे जे वहकरे ते अॾियल प्यार जो महल, आख़िर केसि ताईं पंहिंजूं पाड़ूं पुख़्तियूं करे कंहिंजे प्यार एतबार सां चर्चा कंदो रहंदो। इहो माण्हू केॾो न मासूम हूंदो आहे जेको सचे प्यार ऐं एतबार जी तमन्ना ऐं जुस्तजू में हलंदे भिटकंदे, जॾहिं कूड़ा प्यार ऐं एतबार पंहिंजे पांध में पाए वठंदो आहे, तॾहिं हुन खे कूड़े प्यार ऐं एतबार जी पहचान ई नाहे रहंदी, सुञाणप ई नाहे रहंदी। हू हासिलात जे ख़ुशीअ में कूड़ ऐं सच, धोके ऐं दलबे जे वजूद खे विसारे सिर्फ़ प्यार ऐं एतबार जी नज़र ईंदड़ हर मुश्किल ते वेसाव करे ॾाढो सरहो थींदो आहे। पर जॾहिं धोके ऐं दलबे वारो प्यार ऐं एतबार पंहिंजी असुल रंग सां पधरो थी पवे, तॾहिं ॾुख ऐं सदमे जे इंतिहा जो अंदाज़ो लॻाए नथो सघिजे।

जी साईं, मुंहिंजा प्रोग्राम रोशन सुबुह मां ॿुध पिया जीअ जे नेटवर्क तां, ऐं मां वांजो मेज़बान नेमतुल्लाह जूणे जो। साईं मुंहिंजा, अॼु असां अव्हां खे कोई बि सवाल न आहे नओं, न का अव्हां खे असां गुज़ारत ॾिनी आहे, ऐं तव्हां असांखे सिर्फ़ पंहिंजा नाला, पर असांजी अव्हां खे गुज़ारिश इहा आहे त कंहिं बि गाने जी कंहिं बि कलम जी फरमाइश न कयो, छो त ही चूंड मौसीकी हूंदी आहे, सिलेक्शन पंहिंजी असांजी हूंदी आहे। पंहिंजा नाला लिखायो ऐं असांखे कंहिं बि कलम जी फरमाइश न कंदो, तव्हांजी महिरबानी थींदी। पर साईं मुंहिंजा, ॻाल्हि कंदासीं नेणनि जी, ऐं नेण जिते प्यार ऐं सूंह जो मुहावर ऐं मर्कज़ रहिया आहिनि, उते शायरनि जी तख़लीक तोड़े तस्वरनि ते माहिल रहिया आहिनि। ॻाल्हि जॾहिं मूमल जे अखियुनि जी निकिरे थी त लतीफ़ सरकार

जी साईं जा प्रोग्राम रोशन सुबह मां बुधो पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां मां जो मेज़बान नेमत लाजण जो साईं जा तव्हां जो असांजो साथ रहंदो ठीक 11 वगे ते कॾहिं बि न वञिजो हिन वक़्तु हलूं पिया असां कमर्शियल ब्रेक तरफ़ ऐं न्यूज़ ब्रेक तरफ़ वरी वापसि ईंदासीं।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
5: सियासी ताका नहीं डालने देगा, कश्मीर हो या कश्मीर, मीरपुर हो या मीरपुर खास, इनके अवाम अपने हुकूक का सौदा करने के लिए तैयार नहीं। 27 जुलाई को कश्मीर की तरह कश्मीर का फैसला पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के हक में होगा। मीरपुर खास की तरह मीरपुर का अवाम तीर से शेर का शिकार करेंगे।
6: मियाँ साहब, अवां के खबर ना है, अवां के खराब न लगे त मीरपुर हुजे या मीरपुर खास, कश्मीर हुजे या कश्मीर, उन्हनि जो रुगो नालो ना है हिक जेड़ा, पर संदन मिजाज ऐं गैरत भी हिक जेड़ी आहे। खैन हक लाइ बीहण जो हौसलो भी आहे। कश्मीर हुजे या कश्मीर, केर भी पंहिंजे हक़नि ते धाड़ो हणण न ॾींदा। कश्मीर ऐं मीरपुर खास जी अवाम वांगुर आज़ाद कश्मीर जो बि अवाम नून लीग खे रद्द कंदो। आज़ाद कश्मीर जो अवाम बि तीर सां शींहं जो शिकार यकीनी बणाईंदो। सीनियर वज़ीर शर्जील इना मेमन चयो आहे त आज़ाद कश्मीर जा माण्हू पीपल्स पार्टीअ खे वोट ॾींदा। आज़ाद कश्मीर जो अवाम वोट ज़रिए नून लीग खे रद्द कंदो। आज़ाद कश्मीर जे इलेक्शन में धांधली करण न ॾींदासीं। आज़ाद कश्मीर में थींदड़ एहतजाजनि पुठियां भारत जो हथ निकितो। शर पसंदनि खे भारतीय फंडिंग जा सबूत साम्हूं अची विया। हिकु ॼणो गिरफ़्तार। सुद समा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारड़ चयो आहे त ग़लति ॼाण पखेड़ींदड़ समूरी नेटवर्क जो तालुक भारत सां आहे। साज़िशी अंसरनि कश्मीर जो पाकिस्तान सां रिश्तो कमज़ोर करण जी नाकाम कोशिश कई। पाबंदी मढ़ियल जमायत जो चूंडनि में हिसो न वठण भारत नवाज़ हुअण जो सबूत आहे। जथन ऐं
7: कानून खूब उसकी शान हो तो उस पे समान हो। अभी
6: पेड़ पखेड़ जूं नाकाम कोशिशूं कयूं वयूं।

अमेरिकी ऐं इसराइली ॾांहुं ख़िलाफ़ मज़ाहमत खां सवाइ ॿियो को बि रस्तो बाक़ी न बचियो आहे। हिज़बुल्लाह जी जिदोजहद दुनिया जे आज़ाद क़ौमनि लाइ हिकु मुतासिर कंदड़ पैगाम बणिजी वई। लबनान ख़िलाफ़ इसराइली हुकूमत जे जाहिरियत जो ग़ैर मशरूत ख़ात्मो अमेरिका सां थियल मुआहिदे जी हिकु बुनियादी शर्त आहे। ईरान जे सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामना हिज़बुल्लाह पारां वफ़ादारी जे अज़म लाइ लिखियल ख़त जो जवाब में चयो आहे त ईरान मज़लूम पर ताक़तवर हिज़बुल्लाह मुजाहिदीन जे दिफ़ा खे पंहिंजो फ़र्ज़ समझे थो ऐं ईरान हिज़बुल्लाह सां पंहिंजो स्ट्रेटजिक सहारो जारी रखंदो। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी जे डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो गोर्सी चयो त नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सां टेलीफोनिक राब्तो हिते जी ताज़ी सूरतहाल इलाक़ाई ऐं आलमी अमुन तोड़े इस्तेहकाम खे हथी वठण लाइ सिफारतकारी ऐं तामीरी राब्ता जारी रखण ते। डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो गोर्सी चयो त इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त बाद उमीद आहे त धुरियूं ॻाल्हियूं ऐं राब्ते जो अमल जारी रखंदियूं, छाकाणि त पुरअमन ऐं पायदार हल ताईं पहुचण लाइ ॻाल्हियूं इंतिहाई ज़रूरी आहिनि। डायरेक्टर जनरल गोर्सी डिप्टी वज़ीर आज़म खे गॾियल क़ौमनि जे सेक्रेटरी जनरल जे उहिदे लाइ पंहिंजे उमेदवार बाबति आगाह कयो। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार गॾियल क़ौमनि हिकु मुअसर घण तरफ़े निज़ाम लाइ पाकिस्तान जे मज़बूत हिमायत जो वर्जाउ पिण कयो। ईरान ते हमले ते इख़्तिलाफ़नि जो फ़ौजी सरबराह डीन केन ईरान ख़िलाफ़ जंग में शिदत ते ख़दशनि खां सदर ट्रम्प खे आगाह करे छॾियो। CNN मूजिब जनरल डीन केन आला सतही इजलास में सदर ट्रम्प खे ईरान ख़िलाफ़ इम्कानी फ़ौजी कार्रवाइयुनि बाबति नतीजनि ऐं ख़तरनि खां आगाह कयो। हथियारनि जे ज़खीरनि में घटिताई ऐं ॿियनि चैलेंजेस बाबति बि ख़दशा रखिया। नायब सदर JD वेनस बि ख़िते में एहतियातनि जे ख़दशनि बाबति सदर खे आगाही ॾिनी।

0: अमेरिकी फौज सदर डोनाल्ड ट्रम्प जे हुक्मन बाद ईरान ते हमला रोके छड़िया। अमेरिकी मीडिया मूजिब सदर ट्रम्प पेरियाट दिफाई मिसाइल जे जखीरन में घटाई अरबे तादन कार्रवाई न करण जो फैसलो कयो आहे। व्हाइट हाउस मूजिब सदर ट्रम्प सदाई तकरार जे सिफारती हलन के तरजीह डिनी आहे। जेकॾहिं ईरान अबन हर्मुज ऐं इतिहादिन खिलाफ़ शिदत ते बदल कार्रवाइयूं जारी रहियूं त सदर ट्रम्प वटि सभु ऑप्शन मौजूद आहिनि। ईरान लाइ बहितर आहे त ॻाल्हियुनि वारो रस्तो इख़्तियार करे। अमेरिका पारां हमला बंद करण बाद ईरान बि अमेरिका ख़िलाफ़ कार्रवाइयूं रोके छॾियूं। ईरानी फ़ौज चयो आहे त अमेरिका ॿिनि रातनि खां हमला नाहिल कया, जंहिं बाद ईरान बेजवाबी हमला रोके छॾिया आहिनि। अमेरिका थकिजी पियो आहे। अमेरिका वटि का बि वाज़े हिकमत अमली नाहे। दिफ़ाई हमलनि में अमेरिका जो घणो नुक़सान थियो आहे। 200 खां वधीक अमेरिकी फ़ौजी मारिया विया आहिनि। अमेरिका ॿीहर हमला शुरू कया त जंग वधीक पखेड़जी वेंदी। अमेरिका खे इसराइली पॉलिसियुनि खां मुतासिर थी फ़ैसला न करण घुर्जनि।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: झुरियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
4: फकीरी सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
5: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई देव से नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
3: GFM 91.6
4: ब्लड प्रेशर जे करे पैदा थींदड़ अखियुनि जे पर्दे जे बीमारियुनि जो इलाज ऐं ऑपरेशन जदीद मशीनन सां कयो वञे थो। जिना अस्पताल कराची, लियाकत मेडिकल कॉलेज हैदराबाद, खैरपुर मेडिकल कॉलेज, गुलाम अहमद मेडिकल कॉलेज सखर ऐं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काणे जो अॻूणो चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद जमाल सिद्दीकी। अखियुनि जे पर्दे
2: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
3: GFM 91.6।
5: सचल की सरमस्त धरती
6: फातिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
5: GFM 88 नेटवर्क
6: सिंध की आवाज़।

साईं मुंहिंजा प्रोग्राम रोशन सुबुह में वापसि अची चुका आहियूं ऐं जी समय तव्हांजो असांजो साथ रहंदो ठीकु यारहें वॻे ताईं ऐं अव्हां खां को बि सवाल कोन्हे, अव्हां खां का बि गुज़ारत कोन्हे का। तव्हां असां ॾे पंहिंजा नाला मोकिले सघो था पंहिंजे इनबॉक्स वारे SMS ते ऐं फेसबुक जी ID ते ऐं मोबाइल नंबर ते बि तव्हां पंहिंजा नाला मोकिले सघो था। असांजो मोबाइल नंबर आहे 0332-1322-88। साईं मुंहिंजा विख विख ते उल्को, विख विख ते खुटको ऐं विख विख ते परेशानी। ऐं साईं मुंहिंजा पंहिंजो उल्को, पंहिंजो खुटको ऐं पंहिंजी परेशानी न पर पीरीअ जो उल्को, खुटको ऐं परेशानी कदम कदम ऐं लम्हे लम्हे पंहिंजे वजूद जे पासे जीअं गॾु गॾु रहंदी आहे। त पीरीं परे आहे, अलाए कहिड़े हाल में हूंदो, अलाए का तकलीफ़ न हूंदसि, का परेशानी न हूंदसि। घड़ीअ घड़ीअ वीचार हुन जो जंहिं सां प्यार दिल जो, उन करे हिन प्यारे प्यार वारे माण्हू सां सदाई जेको आहे सो असांजे लाइ ऐं असांजे दिल मां हुन लाइ दुआ घुरंदी आहे, निकरंदी आहे त सदाई ख़ुशि हुजे जिते बि हुजे ऐं असांजो महबूब सदाई ख़ुशि हुजे। ऐं यादि बि कंदा आहियूं, पोइ असांखे पंहिंजो महबूब यादि करे न करे पर असां हुनखे यादि ज़रूर कंदा आहियूं।

0: सचल की सरमस्त धरती
1: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उदंदा रहो उदंदा रहो।
2: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by
3: Hemme Diamond Glow Bleach Cream, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस, चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी। Hemme Diamond Glow Bleach Cream।
4: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
5: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
4: अब दर्द को कहें अलविदा
5: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
4: जी हाँ,
5: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
4: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
5: ये ऑइंटमेंट
4: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
5: दर्द, सोजिश
4: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
5: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
4: गर्दन और कमर की तकलीफ,
5: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
4: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
5: और जल्दी जलन में मुफीद।
4: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
5: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
4: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबले एतमाद मयार।
5: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
6: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर नीह जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
7: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, कुदरती निखार।
0: फकीरली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: गुजारियो एतमाद से कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सुंदर जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सुंदर जो आवाज बुधंदा रहो।

मोहब्बत चांद होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक उम्र लगती है। कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है। ये दुनिया जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है।

देखिए ड्रामा सीरियल मोहब्बत और महंगाई रोजाना रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।

साईं जा मौली रेणी माशी खां ज़मीर हुसैन सोलंगी, मुख़्तार अली सोलंगी, ज़हीर अब्बास सोलंगी, ॻोठ कंगन खां गुलाब खान कुंभर ऐं ॻोठ हसूजतुनि खां मोहम्मद मूसा यार, मोहम्मद नसर लाइ जतोई, ॻोठ मोहम्मद कासिम चांडियो खां अली अकबर चांडियो ऐं ॻोठ शिटो खान मक्सी खां सिकंदर अली मक्सी, अकबर खान मक्सी ऐं यार मोहम्मद कलोड़ा कॉलोनी लाड़ेकाणे खां फौजी इरशाद अली।

जी आसमिन प्रोग्राम रोशन सुबुह जो वक्त पहुंचे पांजे पुजाणी ते हयाती रही तवा सा जरूर मुलाकात थी तेसी तई पांजे मेज़बान नेमतुल्लाह जूणे जो खेदा इजाज़त अल्लाह निगाहबान।

0: आजाद कश्मीर जी कानून साज।
1: अहमद बेटा चलो उठ जाओ।
2: मम्मा
1: हाँ
0: जो तैयारी मुकम्मल चूंट सामान पोलिंग स्टेशन से पहुंचाया गया। वीरपुर डिवीजन के टिन जिलन वीरपुर कोटली बिम्बर में पोलिंग सुभाने थी। टिन्ही जिलन में 13 तकन पोलिंग

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: Manjit.
1: It's 11:15 a.m.
0: This time check.
2: White-ish beauty cream. Glowing skin jo raaz. A product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज़
4: GFM 91.6

चाहत से पता करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत से पता करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलामो अलैकुम, अस्सलामो अलैकुम, अस्सलामो अलैकुम। यू आर शेयरिंग इट टू यू एफएम ETH और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम पर्सनैलिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आज ये रुखसार सिंध की आवाज।

आप आई होप से कीजिए जहाँ जहाँ भी मौजूद है टिप टॉप सर्कुलर साउंड एकदम स्ट्रांग है सुन रहे हैं जहाँ जहाँ भी मौजूद है बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद है और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरी पूरी तैयार है पूरी पूरी एक बजे तक सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है जो कि आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 टिल 1 पीएम आपका और मेरा साथ रहता है और आज भी रहेगा इंशाल्लाह पूरी पूरी एक बजे तक प्रोग्राम में हम वक्त की बात करेंगे तो 11:21 जो कि पाकिस्तान का मियारी वक्त है

0: ही प्यार है।
1: लेकिन उससे पहले हम प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना, और प्रोग्राम का पहला गाना जो कि हम इंक्लूड करने जा रहे हैं द वन एंड ओनली राहत फतेह अली खान एंड अली कोहली मिर्जा की आवाज में। तो सुनेंगे, एंजॉय करेंगे और आगे चलेंगे। स्टे ट्यून्ड।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।
2: It's 11:30 a.m. This time check is brought to you by
3: Heme Diamond Glow Bleach Cream Kudrati Jizan sa tayar kayal Jekade Kudrati Nikhar Saaf Naram Ay Roshan Chehro Heme Diamond Glow Bleach Cream
4: Fakiri Neem Prickly Heat Soap Jildi Infection se bachao ka behtareen zariya hai
5: Fakiri Neem Prickly Heat Soap
4: Jildi Allergy aur Kharish ke liye mufeed hai
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास हर रोज कुदरती निखार
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
5: जिल्द को गहराई से साफ करने जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए
6: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंधु जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
2: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते बसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज
2: 0001134888 इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 8881 पर। कॉमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज होगा www.facebook.com/GFM88 के पेज के ऊपर। लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग नहीं बल्कि पोस्ट आपको मिलेगी GFM88 के पेज के ऊपर। जिंदगी गुलजार है की पोस्ट एंड वहां पे आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारा सेगमेंट है जी सुर लगाओ गाना सुनाओ, जिसमें आप कॉल करके एक अदद गाना सुनाएंगे और वो गाना उसी टाइम पे प्ले कर दिया जाएगा।

0: ओके जी, कॉल्स आप लोगों की लेना हम स्टार्ट कर रहे हैं 03000113488 के ऊपर. फर्स्ट कॉलर ऑन द ऑफ द शो. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम. कॉल ड्रॉप. नेक्स्ट कॉलर. हेलो हेलो,
1: अस्सलाम
0: वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से
1: पहचानो?
0: स्मार्ट किशोर
1: जी.
0: इतने दिनों बाद वाकई स्मार्ट किशोर है.
1: लिख कर दूं?
0: सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है.
1: असल में क्या है, आवाज आपकी वापस आती है.
0: अच्छा, आवाज
1: इस हिसाब से मुझे इतना समझ रहा हूँ कि मेरी आवाज बिल्कुल आपको क्लियर आ रही है.
0: हाँ, ये है कि आपकी आवाज अब मुझे क्लियर आ रही है. स्मार्ट किशोर कैसे ठीक ठाक, इतने दिनों बाद कॉल कर रहे हैं. इतने दिन तक कहाँ थे आप?
1: मसरूफ था.
0: मसरूफ थे
1: जबरदस्त
0: जबरदस्त. कोई गाना शाना लेकर आए? प्रोग्राम सुन रहे हैं आज?
1: पहले आप बताओ, मिस किया आपने?
0: एग्जैक्टली, मैं अपने सब लिसनर्स को बहुत मिस करती हूँ जो नहीं आते, और आपने आए. डेफिनेटली हम सब ने आपको बहुत मिस किया. लिसनर्स ने आपको बहुत मिस किया, मैंने आपको बहुत मिस किया, आपके गानों को मिस किया. और अब हम यही सोच रहे हैं कि इस माँ किशोर अब क्या गाएंगे.
1: अच्छा, ये मुहाफिज का ओएसटी है.
0: अच्छा, और मैं मजे की बात बताऊँ आपको, मुहाफिज का ओएसटी ना मैंने क्यू करके रखा हुआ है. अभी मैं चलाने ही वाली थी. सीरियसली, अगर कोई कॉलर ना आता तब मैं ये गाना चला दी थी.
1: चलें ठीक है, फिर टाइम जाया नहीं करते.
0: ओके ओके.

0: बेवफा से वफा नहीं होती, बेवफा से वफा नहीं होती, जान जब तक फिदा नहीं होती।
1: ओके वेरी नाइस। और कुछ कहना है, किसी को डेडिकेट करना है?
2: थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।
1: थैंक यू।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 11:45 AM.
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
5: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
4: सिंध जो आवाज बुधंदा।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
1: सखर से दानिश बात कर रहे हैं कैसे ठीक ठाक
2: पहली
1: दफा कॉल कर रहे हैं
2: जी जी
1: ओके मुझे बताएं प्रोग्राम सुनते हैं
2: बिल्कुल सुनते जी
1: गाना सुनाएंगे
2: गाना अपना फरमाइश का गाना सुना दें
1: अपनी फरमाइश का मतलब अपनी पसंद का
2: चलेंगे
1: ओके मैं सुनाती हूँ जी और कुछ कहेंगे
2: बहुत खुश रहोगे बड़ी मेहरबानी
1: ओके जी अल्लाह हाफिज और मेरी फरमाइश का गाना मैं किसे फरमाइश करूँ चले मैं अपनी फरमाइश का गाना आपको सुना देती हूँ और वैसे मेरी फरमाइश का गाना अभी तक मैंने कोई लाइनअप नहीं किया हुआ लेकिन ये है कि कोई अच्छा सा सॉन्ग जो कि मुझे आ रहा है नजर तो उसको सुनेंगे एंजॉय करेंगे और इसी के साथ हम चलेंगे आगे और आज का टंग ट्विस्टर क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी साथ साथ सो हियर कम्स द सॉन्ग ओएसटी सॉन्ग फ्रॉम तपेश

0: सी।
1: ओके, आज का जो टंग ट्विस्टर है वो कुछ इस तरीके से है कि आपने कहना है कि टप टप टपके टपकता टपका, टपकते टपके से टपका टपका, ठीक है, ये कहना है। टप टप टपके टपकता टपका, टपकते टपके से टपका टपका, इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। और अगला जो हमारा सेगमेंट होगा वो होगा बोलो तो माने, और आप कहेंगे कि टप टप टपके टपकता टपका, टपकते टपके से टपका टपका, ठीक है, सही है। और इसी के साथ हम जाएंगे छोटे से कमर्शियल प्लस न्यूज ब्रेक की जानिब। आपने कहीं नहीं जाना, मेरा साथ देना है, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है फ्रॉम योर फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम रेडियो नेटवर्क सिंध की।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी की आवाज
1: GFM 90.1।
2: Express PM. This time check is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account. भरोसा भी, रफ्तार भी. Bank Al Habib. रिश्ता भरोसे का.
4: अब आप सुनेंगे GFM Network पर KTN.
5: हमारे वजीर ख्वाजा आसिफ भारती वजीर राजनाथ सिंह जे बयान के रद्द करने चाहिए वाहे तो भारत जे जारहान इन कदमन सबब खितो यर्गमाल आहे भारतीय वजीर जे बयान बाजी बिगड़ती जोगी आहे जेका खतरन के वधीक वधाए रही आहे। अमेरिका सां गाली लाए तैयार आयो ईरान पाकिस्तान समेत साल्स मुल्कन के आगाह करे छो। अरब मीडिया जे रिपोर्ट मूजिब ईरान पाकिस्तान के आगाह कयो आहे तेहरान वाशिंगटन सां इस्लामाबाद दोहा या जेनवा में गालियूं करण लाइ तैयार आहे। ईरानी परडेही तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त पाकिस्तान ऐं कतर समेत साल्स मुल्क तेहरान ऐं वाशिंगटन विच में राब्तनि लाइ फाल किरदार अदा करे रहिया आहिनि। अमेरिका गालियुनि दौरान टियों भेरो हमिलो ईरान दिफ़ा लाइ तैयार आहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हथियारनि जे ज़खीरे में खोट वारनि ख़बरनि खे रद्द करे छॾियो। अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल सां ॻाल्हाईंदे डोनाल्ड ट्रंप चयो त अमेरिका वटि दुनिया जे कंहिं बि मुल्क खां वधीक हथियारनि जो ज़खीरो मौजूदु आहे। अमेरिकी दिफ़ाई सलाहियतनि बाबति गर्दिश कंदड़ ख़बरुनि में हक़ीक़त नाहे। पेंटागॉन ईरान ख़िलाफ़ जंग में 18 फ़ौजियुनि जे मारजण जी तस्दीक करे छॾी। 200 खां वधीक ज़ख़्मी ईरान ख़िलाफ़ जंग में मारिजी वियल वधीक 4 फ़ौजियुनि जा नाला लिस्ट मां ग़ाइब। अमेरिकी ख़बरु इदारे मूजिब गुज़िरियल हफ़्ते पेंटागॉन जंग दौरान मारिजी वियल 4 फ़ौजियुनि खे लिस्ट मां हटायो आहे। नाला हटाइण जो को बि कारण नाहे ॿुधायो वियो। अमेरिका ऐं ईरान पारां हिक ॿिए ते हमला रोकण बाद आलमी मार्केट में तेल सस्तो थियण लॻो। आलमी मार्केट में कचे बैरल तेल जे अघनि में 5% खां वधीक जे लात फी बैरल $91 थी वियो। अमेरिकी कचो तेल $84 फी बैरल विकिरो थियण लॻो। गुज़िरियल हफ़्ते कचे तेल जूं क़ीमतूं $100 फी बैरल खां वधी वियूं हुयूं। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जे लाहौर में मंसूर अहमद जमात इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम सां मुलाक़ात। अमीर हाफिज़ जे लाॾाणे ते फातिहा ख़ानी करे ॾुख जो इज़हार कयो। ॿिन्ही अॻवाननि मुलाक़ात दौरान मुल्की सियासी सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल बि कई। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद जी शहादत खे 78 साल मुकमल थी। फील्ड मार्शल ऐं ॿियनि पारां भेट आपेश। सदर आसिफ ज़रदारी चयो आहे त कैप्टन सरवर शहीद कश्मीर जी आज़ादीअ लाइ ज़िंदगी क़ुर्बान कई। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो त समूरी क़ौम शहीद खे भेट आपेश करे थी। भान सईदाबाद वेझो गुज़िरियल ॾींहुं क़तल थियल पीरसन जे वारसनि जो लाश रखी धरणो। खमीसो टालपुर जे वारसन इंडस साहिब खे लाश रखी धरणो आयो। पीरसन जे क़तल में मुलविस जवाबदार गिरफ़्तार करण जो मुतालबो। पीरसन खमीसो टालपुर खे गुज़िरियल ॾींहुं पुराणे तकरार तां क़तल कयो वियो हो। सेठारजा में ॻोठाणनि जो पुलिस ऐं बासरनि ख़िलाफ़ औरतनि समेत पाक किताब खणी धरणो। ॻोठ सबर खां रिंद जे रहवासी नाका चौक ते धरणो हणी पुलिस ख़िलाफ़ नारेबाज़ी कई। ॻोठाणनि जो चवण आहे त ज़मीन जे तकरार सां ॻोठ ख़ुदा बख़्श सुमरो जे बासरनि घरनि ते हमिलो करे फायरिंग कई। बोज़दार वॾा पुलिस औरतनि ऐं मर्दनि समेत 10 माण्हुनि मथां कूड़ो केस दाख़िल कयो आहे। बासर हिरासां करे कूड़ा केस दाख़िल कराए रहिया आहिनि। नोटिस वठी इंसाफ़ कयो वञे। कपचाणी थाणे मां चोरी जे इल्ज़ाम में गिरफ़्तार जवाबदार हथकड़ी खोले फरार। गुज़िरियल ॾींहुं 75 मोरी भरिसां जवाबदार मोहम्मद सोलंगे खे चोरी जे इल्ज़ाम हेठि गिरफ़्तार कयो वियो हो। जवाबदार जे फरार थियण बाद पुलिस में थरथलो मची वियो। अहलकार फरार थियल जवाबदार खे फसुल में ॻोल्हींदा रहिया।

0: सिंध के मौसमियाती तब्दीली के असर का बचाण लाइ सिंध वासियुनि पारां वण लॻाइण जो सिलसिलो जारी। केटीएन न्यूज़ ऐं कावच पारां 31 जुलाई 2026 ताईं वण पोखण जो सॾु ॾिनल आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: यार कुछ डीन खां चेल जो सूर, जोड़न जी तकलीफ, अया साबी दर्द एतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
4: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करी?
3: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
4: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
3: सिर्फ चेल ऐं सूर लाइ
4: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ, सट, धक लॻण, पुराणन जख्म जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
3: इस्तेमाल कीअं कजे?
4: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2 खां 3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हा, फकीर दम
5: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

चलो एक और आप लोगों के लेंगे हम 03000113488 के ऊपर और देखेंगे कि आज का तंगटशक कौन सही सही और अच्छा अच्छा कह पाता है. सो हियर कम्स द फर्स्ट कॉलर, अगर तुम्हें रिसीव कर पाती हूँ.

0: 8 के ऊपर आप लोगों की बहुत सारी लाइव कॉल्स को एंटरटेन किया जा रहा है, साथ साथ आप लोगों के कमेंट्स और मैसेजेस की तरफ भी हम मूव करेंगे. एंड हमें ट्यून किया है जी मंजर महमूद मंजर ने और कहते हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. और इसके अलावा जी कहते हैं कि जी नजीर खोजो हमारे से मौजूद हैं सोबतपुर बलूचिस्तान से. थैंक यू सो मच. और इस वक्त हमें और भी बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हो चुके हैं आप लोगों के. तो उस्ताद अहमद बख्श वसीर हमें सुन रहे हैं विलेज डिंगल खान वसीर से ठारजा से. प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, आप मेहनत कर रही हैं. थैंक यू सो मच और आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और इसके अलावा जी आप ट्यूनिंग किए हुए हैं. अच्छा कॉलर्स आना शुरू हो चुके हैं, कॉल्स लेते हैं. हेलो हेलो
1: वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से? हाफिज लखनी फ्रॉम मोरो. भाई प्रोग्राम सुन रहे हैं, टंग टस्टर बोलेंगे. अच्छा मैं बताऊं तो बोलेंगे? आपने कहना है टप टप टपके टपकता टपका, टपकते टपके से टपका टपका.
1: क्या टप टप टप टप?
0: आपने कहना है टप टप टपके टपकता टपका, टपकते टपके से टपका टपका.
1: टप टप टपके टपकता टपका, टपके टपके से
0: टपकते टपके से टपका टपका. कहें ना, नहीं आएगा. चलें कुछ और कहेंगे. ओके जी, ये डर के मारे कॉल काट दी. वेरी बैड. डरने की क्या जरूरत थी, जबरदस्ती थोड़ी कहलवाती आपसे. अच्छा नेक्स्ट कॉलर. हेलो
2: हेलो अस्सलाम
0: वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
2: जी मैं वकार लाड़काना.
0: वकार लाड़काना से. कैसे भाई, ठीक ठाक है?
2: खैर खैरियत. रुखसार भाई आप सुनाए आपके.
0: रुखसार भाई बिल्कुल ठीक है, मुझे बताएंगे. टंग ट्विस्टर सुनाए बोलेंगे.
2: जी जी सुना है, लेकिन दुखिया है ना.
0: दुखिया है, थोड़ा सा कोशिश तो करें.
2: बरसा पानी.
0: नहीं नहीं बरसात तो है ही नहीं इसमें, किधर से ला रहे हैं बरसात.
2: बरसात
0: टिप भी नहीं है, टप टप है. टप टप टपके टपकता टपका, टपकते टपके से टपका टपका.
2: टपके मुख्य नहीं सार भाई, निराश नती.
0: चलें कुछ और कहेंगे.
2: हेलो
0: जी जी कुछ और कहेंगे.
2: जी जी मूसा गडमो नंदड़ियों प्रोग्राम के बुद्ध नाला खड़ा उन्होंने.
0: हाँ जी बिल्कुल ले सकते हैं, ले लें.
2: आसिया डॉक्टर आसिया फातिमा जोया अफसार अमीर के तानी पूरी टीम के सलाम. गाना तो लग रहे हैं.
0: गाना कौन सा सुनेंगे?
2: गाना ताला न्यावी का सुनाओ, बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना भूल जाने के
0: काबिल. चले ठीक है, थैंक यू सो मच. ओके अल्लाह हाफिज. थैंक यू. और इसके अलावा जी हम प्ले कर रहे हैं एक अदद गाना, गाने के साथ कंटिन्यू करेंगे सेगमेंट को. स्टे ट्यून्ड.

0: TuneIn.fm.
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो, उदंदा रहो।
2: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
3: Hemé Diamond Glow Bleach Cream, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस, चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी। Hemé Diamond Glow Bleach Cream.
4: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
5: फकीरी मरहम
4: जैसे तैयार करदा
5: ये मौसर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
4: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
5: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
4: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
5: गर्दन और कंधों के दर्द
4: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतर
5: सिरगाएं
4: और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल जैसे क्रीम को

0: ने हमरा रखे।
1: फकीरी एनल जैसे क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ वी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड, कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
1: यार कुछ डीन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
2: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो न तो करी?
1: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
2: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सा जज़ब थी सूर ऐं सोडियम आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
1: सिर्फ चेल ऐं सूर लाइ
2: न दा, आसाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ, सट, धक लगण, पुराणन जख्मन जे सूर ऐं लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
1: इस्तेमाल कीअं कजे?
2: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लगायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अडी वेजे स्टोर तां नालो वठी खरीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
0: अभी बुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
4: आप सुन रहे हैं जीए FM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज, सिंध।

0: listening to your show at home. Your show is great. और मीरपुर खास से ही हमें सुन रहे हैं जी, थैंक यू. और रियाज महर हमें सुन रहे हैं, रियाज महर सीए, सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम रियाज महर. और कल कहते हैं 5 मिनट हैं और अगर तो ये मुझे मिल गया तो मैं प्ले करूंगी. और डेडिकेशन से जी, बिस्मिल अजरा खोसो और मुझे. ओके जी, अगर मुझे ना भी मिला तब भी हम लास्ट वाला सॉन्ग जो है ना, बिस्मिल अजरा खोसो और मुझे डेडिकेट कर देंगे हम, ठीक है? मैं खुद डेडिकेट करूंगी. क्या ख्याल है, लास्ट लकी कॉलर ले 03000113488. आज पता नहीं क्यों मुझे टाइम शो का बहुत ऐसा लगा है कि पता नहीं शो मैंने किया है या नहीं किया मजाक को. पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि बहुत कम टाइम था मेरे पास, जबकि टाइम उतना ही था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम कम था. अच्छा, नेक्स्ट एंड लास्ट कॉलर, हेलो.
1: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? सॉरी, नाम बताएं.
1: कशिश.
0: कशिश बात कर रही है, कहाँ से?
1: मोरो से.
0: मोरो से कशिश. कशिश पहली दफा कॉल कर रही है?
1: जी हाँ.
0: ओके, कशिश प्रोग्राम सुनती है?
1: यस.
0: कैसा लगता है?
1: बहुत अच्छा है.
0: बहुत अच्छा है. ओके, मुझे बताएं आज की अच्छी बात क्या है.
1: आज की अच्छी बात तो है किसी को दुख ना दे और दिया है तो फिर माफी मांगे.
0: ओके, दिया है तो फिर माफी मांगे. वेरी वेल सेड. और कुछ कहना है कशिश
1: जी? हाँ
0: बोले.
1: आप टंग से पूछना चाहते हैं?
0: टंग ट्विस्टर बोलना है?
1: यस.
0: बोले, जल्दी जल्दी से बोले.
1: एक मरतबा
0: आप, एक मरतबा मैं बताऊं? ओके, मैं बताती हूँ आपको. आज का टंग ट्विस्टर कुछ इस तरह से था कि टप टप टपके टपकता टपका, टपकते टपके से टपका टपका.
1: टप टप टपके टपकता टपका, टपकते टपके से टपका टपका, टपके टपकते टपके से टपका टपका, टपके टपकते टपके से टपका टपका.
0: वेरी नाइस.
1: बताओ ना.
0: नहीं, काफी है इतना. और मुझे लगता है कि मैं जितना बोलूंगी आप उतना कह भी देंगे, लेकिन टाइम नहीं है हमारे पास. सो थैंक यू सो मच कशिश, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. ओके, अल्लाह हाफिज जी. और हम क्या

0: तालिबान खिलाफ जंग में 18 फौजियुनि जे मारजण जी तस्दीक करे छॾी। 200 खां वधीक ज़ख़्मी। ईरान खिलाफ जंग में मारिजी वियल वधीक 4 फौजियुनि जा नाला लिस्ट मां ग़ाइब। अमेरिकी ख़बरू इदारे मूजिबि गुज़िरियल हफ़्ते पेंटागोन जंग दौरान मारिजी वियल 4 फौजियुनि खे लिस्ट मां हटायो आहे। नाला हटाइण जो को बि कारण वियो। अमेरिका ऐं ईरान पारां हिक ॿिए ते हमला रोकण बाद आलमी मार्केट में तेल सस्तो थियण लॻो। आलमी मार्केट में कचे बैरल तेल जे अघनि में 5% खां वधीक जी लात। फी बैरल $91 थी वियो। अमेरिकी कचो तेल $84 फी बैरल विकिरो थियण लॻो। गुज़िरियल हफ़्ते कचे तेल जूं क़ीमतूं $100 फी बैरल खां वधी वियूं हुयूं। सिक्योरिटी फोर्सेज
1: जो स्टैंडर्ड को वैल्यू करते हैं वो हर डिटेल को इम्पोर्टेंस देते हैं।
0: बलोच नौजवान के कतल करण जो भी एतराफ़। दहशतगर्द हबीबुल्ला चयो आहे त दहशतगर्द तंजीम पैसनि जी लालच ॾेई भर्ती कयो। दहशतगर्दी जी तरबियत बि ॾिनी वई। हमलनि बाद सुञाणप लिकाइण ऐं फरार थियण जा गुर बि सेखारिया विया। रुगो 25,000 एवज़ पंहिंजे बलोच भाइरनि जे रत सां पंहिंजा हथ रंगिया। दहशतगर्द तंज़ीम छॾींदड़ खे मारियो वेंदो आहे। सिंध जूं सरकारी अस्पतालूं HIV पखेड़ जो सबब बणजण लॻियूं। गिम्स वलिका ऐं लांडी जे सोशल सिक्योरिटी अस्पताल बाद कराची जे सभ खां वॾे ॿारनि जे अस्पताल NICH इलाज लाइ आयल ॿारनि जे HIV में मुबतला हुअण जे तस्दीक ज़रियनि मूजिबि सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां इलाज लाइ NICH आंदल ॿारनि जा टेस्ट कराइण दौरान केतिरनि ई ॿारनि में HIV जी थी आहे। कराची जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां इलाज लाइ NICH आयल ॿारनि में HIV जी तस्दीक थी आहे। ॿारनि जो अंग 50 आहे। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जे लाहौर में मंसूरा अहमद जमायत इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम सां मुलाक़ात। अमीर उल ज़ईम जे लाॾाणे ते फातिहा ख़वानी करे ॾुख जो इज़हार कयो। ॿिन्ही अॻवाननि मुलाक़ात दौरान मुल्की सियासी सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल बि कई। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद जी शहादत खे 78 साल मुकमिल थी विया। शहीद खे सदर, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल ऐं ॿियनि पारां भेटा पेश। सदर आसिफ ज़रदारी चयो आहे त कैप्टन सरवर शहीद कश्मीर जी आज़ादीअ लाइ ज़िंदगी क़ुर्बान कई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त समूरी क़ौम शहीद खे भेटा पेश करे थी। भान सईदाबाद वेझो गुज़िरियल ॾींहुं क़तल थियल पीरसन जे वारसनि जो लाश रखी धरणो। खमीसो टालपुर जे वारसन इंडस वे हाइवे ते लाश रखी धरणो हयो। पीरसन जे कतल में मुलविस जवाबदार गिरफ़्तार करण जो मुतालबो। पीरसन खमीसो टालपुर खे गुज़िरियल ॾींहुं पुराणे तकरार तां क़तल कयो वियो हो।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: जुड़ियों, चायों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
5: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
6: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो ले।

0: ओके जी, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। और इसी के साथ साथ आप सुन रहे हैं वाई टी एच एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर किया जा रहा है वाई टी एच ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। ओके जी, हमारे साथ यहाँ पर अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो बताएंगे कौन कौन है और बताएंगे तरीकेकार क्या होंगे हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के। लेकिन उससे पहले जो आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल यानी कि टॉपिक पूछा जाएगा तो वो बता देते हैं सबसे पहले। तो बिल्कुल जी, आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक होने वाला है वो थोड़ा सा अतरंगी होने वाला है। अतरंगी ऐसे है कि थोड़े नॉर्मल से सवाल पूछ पूछ कर मैं जरा उकता से चुकी हूँ, तो मैं ये सोच रही थी कि आप लोगों से आज जो सवाल पूछूं वो थोड़ा सा अतरंगी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो आज का जो सवाल होगा वो कुछ इस तरह होने वाला है कि आप मुझे बताएंगे कि भाई इंसानों के पास तो आजकल मोबाइल फोन का रुझान बहुत ज्यादा।
1: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल।
0: आजकल देखा जाए तो वो हमारी सोच से बात तो कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। तो मेरा आप लोगों से सवाल ये होने वाला है, आप मुझे बताएंगे अगर ये रुझान जो है जानवरों के पास भी होना स्टार्ट हो जाए, यानी कि आगे जाकर जानवरों के पास भी मोबाइल फोन आना स्टार्ट हो जाए, तो मुझे बताएंगे सबसे ज्यादा रील जो है वो कौन सा जानवर बनाएगा। हाँ जी, अगर जानवरों के पास भी मोबाइल फोन आता होता तो सबसे ज्यादा रील्स कौन सा जानवर बनाता, आपको क्या लगता है बताएं मुझे जल्दी से। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो GLRKANA FM 88.8 हमारा पेज है, आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाएगा। पेज को आपने फॉलो कर लेना है, उसके बाद पेज को आप जैसे ही खोलेंगे आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाएगी, जैसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ये तीनों काम है जो कि आप लोगों ने करने हैं। सिर्फ कमेंट नहीं कीजिएगा, आप लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, उसके बाद आप कमेंट कीजिएगा। ओके जी, तो ये तीनों काम कीजिए, उसके बाद हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए और मुझे बताइए कि अगर जानवरों के पास मोबाइल फोन होता तो सबसे ज्यादा रील्स किस जानवर ने बनानी थी। हाँ जी, बताइए जरा। और साथ साथ अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके एरिया में मिल रहे हैं नहीं, ये चीज जाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो उसका हाल भी बताएंगे कि कैसे अवेलेबल कराएंगे। और अगर व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के साथ प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा तगड़े किस्म के प्रोडक्ट्स ये जो कि व्हाइट एज वालों ने तैयार कर लिए हैं आप लोगों के हुस्न के मुताबिक, आप लोगों की स्किन के मुताबिक। अगर आप भी खूबसूरती में जरा सीरियस हो चुके हैं, खूबसूरती हासिल करना चाहते हैं तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल मस्ती जनाब लाजमी करके देखें, आपको मजे आ जाएंगे। और ऐसा नहीं कि भाई आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहें तो खूबसूरती मिलेगी, छोड़ दें तो फिर खूबसूरती भी चली जाएगी, ऐसा कोई सीन नहीं बनेगा। इस्तेमाल कीजिए और अपनी खूबसूरती को लॉक कीजिए क्योंकि आप हमेशा के लिए खूबसूरत हो चुके होंगे। इस्तेमाल कीजिएगा व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन साथ साथ यहाँ पर आदिलों से नमी ज्वाइन कर चुके हैं, वालेकुम असलम, कहते केसिया मैं ठीक, आप बताएं। देखते हैं कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। ओके, और गाना ओके में कोशिश करूंगी, लगाएंगे आपका गाना। नजीर खोसो में सुन रहे हैं बलोचिस्तान से, लिखते हैं कि अल्फाज इंसान की असल पहचान में, अल्फाज सिर्फ बोले नहीं जाते बल्कि इंसान की शख्सियत, सोच और तरबियत का आईना होते हैं। नरम लहजा और अच्छे अल्फाज दिल जीत लेते हैं जबकि सख्त अल्फाज बरसों के रिश्ते तोड़ सकते हैं। हम आम फहम सही मगर सादा लोग हरगिज नहीं। ओके जी, बहुत बेहतरीन। और हैप्पी गर्ल कहती है हेलो अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट आरजे केसिया, शो तो वेरी नाइस है और शो के साथ साथ है आप भी। अच्छा, शो के साथ साथ मतलब मैं भी नाइस हूँ, थैंक यू। अखलाक भाई हमारे साथी, वालेकुम असलम अखलाक भाई, चाला अमान मियो हमारी साथी, वालेकुम असलम अमान भाई, कैसे हैं, ठीक ठाक है। हजार खंड जदो ये मैं सुन रही हैं, वालेकुम असलम। अदी सिद्रा मुस्कान, आप कैसी हैं, शो लाजवाब जबरदस्त बेहतरीन माशाल्लाह हमेशा की तरह, थैंक यू सो मच प्यारे भाई, आप बताएं कैसे हैं, ठीक ठाक है। कहते कि हम भी आपके साथ साथ हैं, गुड शो, थैंक यू जी। मुश्ताक अहमद कुंभर हमारी साथी, वालेकुम असलम। सिद्रा बाजी आप कैसी हैं, सिद्रा बाजी बहुत अच्छी, आप बताएं आप कैसे हैं। आमिर अली कहते हैं मैडम आदिल ओके जी, और आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे साथ मुश्ताक अहमद कुंभर भाई कहते हैं आपके शो की क्या बात करें जी, शो ब्यूटीफुल है, नाइस है, लेकिन जब आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपको और ज्यादा मजे आ जाएंगे। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके देखें ताकि आपकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ती रहे। अच्छा, किशोर भाई कहते हैं सलाम अदा किया, आयो खुश आयो पैंजी मस्ती में मस्त, असा पैंजी मस्ती में मस्त आयो, थाम बताया कि आयो। और अली मुर्तजा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सलाम मंझन जो, हाउ आर यू मंझन जो, وعلیکم السلام، ایسا ٹھیک ہے، تاں بتا کی آئے ہو؟ اور کشور بھائی کہتے ہیں ٹاپک بندر، ویسے بھی اے آئی والوں نے بندر کی ریل زیادہ بنا رکھی ہیں. ہاں بھائی، وہ آج کل کتنا چل رہا ہے میں وہ بعد میں بتاتی ہوں. اچھا، یہ تو میرے، اگر میں نے سوچا نا یہ سوال پوچھنے کا، تو میرے ذہن میں سب سے پہلے بندر کا خیال آیا تھا، لیکن میں نے سوچا دیکھیں بھائی ہمارے لسنرز کیا کہتے ہیں. ایک تو چلیں بندر لاک ہو گیا، باقی دوسرے دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا جواب آتا ہے اس ٹاپک کے اوپر. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر جانوروں کے پاس بھی فون آ گیا، ان کے پاس بھی فون ہوا، تو مجھے بتائیں کون سا جانور جو کہ سب سے زیادہ ریلس بنانے والا ہے. جلدی بتائیے اور ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے جائیے. چاند کی جانب دیکھا تو ہوا چاہتا ہے جناب شارٹ کمرشل بریک کی جانب جانے والا، تو شارٹ کمرشل بریک لیتے ہیں، اس کے بعد جلدی واپسی آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ موجود رہنا ہے. میں ذرا یوں جا کر یوں واپس آتی ہوں. سو اسٹے ٹیونڈ، اسٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ وائٹ ایش اینڈ دی اسکن بیوٹی شو، اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ دی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. لگاتے رہیے اور خوبصورتیاں حاصل کرتے رہیے.
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز. جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
3: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
3: سندھ کی آواز.
4: تمام بھی پینجو خوابن جو گھر ایک اہڑی جائے تے ٹھائن چاہیو تھا، جتے ہو جے تحفظ، جدید سہولتوں، ائی منظور تھل سیکورٹی.
5: تپوی بھلی کار، حسینی منزل ہاؤسنگ اسکیم سکھر میں،
4: سکھر شکارپور روڈ تے،
5: ڈاکٹر ضیاء الدین میڈیکل یونیورسٹی جی بالکل سامو،
4: سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پارا منظور تھل.
5: ایک شاندار ائی قابل اعتماد رہائشی منصوبو،
4: حسینی منزل ہاؤسنگ اسکیم سکھر،
5: رہائشی پلاٹس 80, 120, 150 گز جا،
4: کاروباری موقع لائک کمرشل پلاٹس 50 گز ائی 600 گز.
5: ہتے تماں کے ملن تھیو جدید سہولتوں،
4: صاف میٹھو پانی،
5: بجلی، گیس،
4: 24 کلاک کا سیکورٹی،
5: مسجد، پارک، اسکول، باؤنڈری وال، ائی سب کا وڈی گال ہی منصوبو اسپورٹس کمپلیکس جی ویجو ہے،
4: جے کو رہائش ائی سیڑپ کاری بنی لائے بہترین موقع بنائے تھو.
5: اجی پنجے پلاٹ جی بکنگ کرایو،
4: فوری قبضو ائی فوری رجسٹری.
5: کانٹیکٹ
4: 03-00-93-17-252
5: and 03-13-27-57-860. Husaini Manzil Housing Scheme Sakhar.
4: تمام سے محفوظ مستقبل، بہترین انویسٹمنٹ جو بہترین انتخاب.
6: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم.

0: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-day ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: था तो आज ख्वाब आए डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बन जान, तो कोई तवाल आए आए एक बेहतरीन मौको। सखर जो मोतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में इन सेशन लाइ दाखिला जारी आहिन। 4 सालन जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN, GBSM, 5 सालन जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी DPD, 3 सालन जा डिप्लोमा प्रोग्राम्स LHV, CMW, CNA, खास सहूलतों स्कॉलरशिप मौजूद। 5 सालन जे कोर्सेज में एडमिशन बिल्कुल फ्री। जने ता DPD प्रोग्राम में सिर्फ 10,000 रुपया दाखिला फीस, आई फीस सेमेस्टर सिर्फ 60,000 रुपया। हिते तवां के मिलंदा एयर कंडीशन क्लासरूम्स, जदीद लेबोरेटरीज, मुकम्मल लाइब्रेरी, तजुर्बेकार फैकल्टी, हॉस्टल, पिक एंड ड्रॉप, आई फिजियोथेरेपी OPD जी बेहतरीन सहूलत। ही इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट का मंजूर शुदा आई पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल का तस्लीम शुदा लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जो डिग्री याफ्ता आहे। याद रखो सीट्स महदूद आहिन, तंहिं करे पंहिंजे रोशन मुस्तक़बिल लाइ अॼु ई दाख़िला वठो। ऐं हिकु ख़ासि ॻाल्हि, हिते मेडिकल जा शॉर्ट कोर्सिस, OT, हेल्थ टेक्नीशियन ऐं ॿिया सभु कोर्सिस पिण थींदा आहिनि। एड्रेस सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 5, सखर टाउनशिप, मेन बाईपास रोड, सखर। राबितो 0711-56-35-642-0310-816-111।
2: यार मछा क्या किथे वन्या, घर में वेठो आहियां पर ठीक ही नहीं, शायद मुझे जिंदगी लायक दवाई नहीं थी।
3: छो भला साथ छा तोखे, साफ साफ बुधा मसलो छाए।
2: यार एक मसलो हुजे त बुधाया, मुझे ते मसलन जी कतार लगल आहे, न भुख सही लगे थी, अई जे कुछ भी खावा थो त हजम ही न थो थे, पेट फूक जी वने थो, हथ पेर सुन थी वनन था, अई सजो डी सुस्ती महसूस थे थी, कह कम जो रहंदो ही नाया।
3: यार तुजा घणा न, बस एक ही मसलो आ।
2: एक इहो की है?
3: हाँ तुझो मैदो खराब आ, छा तो न बुधो आ, मादो दुरुस्त त इंसान दुरुस्त, जे मादो सही न हूंदो त भुख भी न लगंदी, न हाजमो थींदो ऐं न ताकत मिलंदी।
2: त पोइ मां छा कयां?
3: सोलो हल आहे, इस्तेमाल कर शिफाए मैदा कोर्स, हे कुदरती जुज़न मां तैयार कयल कोर्स तुझे जिस्म जो हिस्सो बणजी, तुझे मैदे के बिल्कुल ताज़ो ऐं मज़बूत करे छॾींदो, भुख खुली वेंदई, खाधो सुठे नमूने हज़म थींदई, पेट फूकजण ख़तम, सुस्ती ख़तम, जिस्म में ताकत ईंदई।
2: वाह यार, वाह जी ॻाल्हि ॿुधाई थी, पर ही किथे मिलंदो?
3: इहो मिलंदई बेड़ी चौक नादरा ऑफिस जे साम्हूं, अल नूर दवाखाना रोड़ी, ऐं राब्ते जे लाइ नंबर बि अथई 0305-58-00-616। शिफाए मैदा कोर्स, मैदो दुरुस्त त इंसान तंदुरुस्त। 28 जुलाई वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, जाइनेक्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड और GAFM के बाहमी तावन से प्रोग्राम हेल्थ इज वेल्थ, आपके होस्ट आगा जब्बार खान के साथ।
4: आलमी योम हेपेटाइटिस के मौके पर खुसूसी आगाही प्रोग्राम में जानिए कि हेपेटाइटिस की अलामत, वजूहात, एहतियाती तदाबीर, जदीद तशखीस और मौसर इलाज क्या है, और इस बीमारी से खुद को और अपने खानदान को कैसे महफूज रखा जा सकता है,
3: जिसका मौजू होगा हेपेटाइटिस से आगाही और बचाव, एहतियात, तशखीस, इलाज।
4: खुसूसी मेहमान
3: डॉक्टर तलहा कुरैशी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट, लिवर ट्रांसप्लांट फिजिशियन, डॉक्टर जियाउद्दीन हॉस्पिटल, सखर। सुनना मत भूलिए, 28 जुलाई बरोज मंगल शाम 4 बजे, ऑनली ऑन GA सखर FM 88।
5: GA FM 88,
6: सिंध की आवाज।
7: छा तव्हां बि पंहिंजे ख़्वाबनि जो घर हिकु अहिड़ी जाइ ते ठाहिण चाहियो था, जिते हुजे तहफ़ुज़, जदीद सहूलियतूं ऐं मंज़ूर थियल सिक्योरिटी?
4: त पोइ भली कार, हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम, सखर में,
7: सखर शिकारपुर रोड ते,
4: डॉक्टर ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जे बिल्कुल साम्हूं,
7: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारां मंज़ूर थियल
4: हिकु शानदार ऐं क़ाबिले एतमाद रिहाइशी मनसूबो,
7: हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम, सखर।
4: रिहाइशी प्लॉट 80, 120, 150 ऐं 200 गज़ जा,
7: ऐं कारोबारी मौक़नि लाइ
3: लाइ कमर्शियल प्लॉट पंजा गज छो गज
4: इत तवे मिलन थी जदीद सहूलतू
3: साफ मिठो पानी
4: बिजली गैस
3: चौवी कलाक सिक्योरिटी
4: मस्जिद पार्क स्कूल बाउंड्री वॉल सबका वही गाल ही मनसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के वेझो है
3: रिहाइश सीड़पकारी बिन्हीं लाइ बेहतरीन मौको बनाए तो
4: अजी पेंजे प्लॉट की बुकिंग करायो
3: फौरी कब्जो फौरी रजिस्ट्री
4: कॉन्टेक्ट
3: 03009317252
4: एंड 03132757860 हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर
3: तमाचे महफूज मुस्तकबिल बेहतरीन इन्वेस्टमेंट जो बेहतरीन इंतखाब 28 जुलाई वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर हेलिक्स फार्मा और GAFM के बाहमी तावन से आप सुन सकेंगे प्रोग्राम हेल्थ इज वेल्थ जिसमें छुपी है आपकी सेहत प्रोग्राम होस्ट आगा जब्बार खान के साथ
4: आइए आलमी योम हेपेटाइटिस के मौके पर माहिरीन से जानी कि पाकिस्तान को हेपेटाइटिस फ्री बनाने के लिए हम सब क्या किरदार अदा कर सकते हैं खुसूसी मेहमान
3: प्रोफेसर डॉक्टर साहिल मोहम्मद चन्ना प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन प्रिंसिपल गुलाम मोहम्मद माह मेडिकल कॉलेज सखर गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट हेपेटोलॉजिस्ट इंचार्ज CM प्रोग्राम फॉर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ हेपेटाइटिस सखर प्रोग्राम का टॉपिक होगा हेपेटाइटिस फ्री पाकिस्तान हेपेटाइटिस के खिलाफ मिलकर कदम बढ़ाएं सुनना मत भूलिए 28 जुलाई बरोज मंगल शाम 6 बजे ओनली ऑन GA सखर FM 88 44 सालन जो तजुर्बो हजारे मरीजन जो एतमाद आगा होम्योपैथिक क्लिनिक होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद 44 सालन जे वसी तजुर्बे सा हर किस्म जा आसाबी अमराज जोड़न जो सूर मैदे में जलन गैस बदहजमी तेजाबियत गुर्दन जी पथरी बवासीर बे औलादी वारन जो किरण गंजपण फॉलेज खारिश ऐं बियन मुख़्तलिफ़ सेहत जी तकलीफ़ुनि लाइ माहिराना होम्योपैथिक सलाह ऐं मुआसिर इलाज फराम करे रहा आहिनि आगा होम्योपैथिक क्लिनिक सखर नए पिंडवारी पुल जे साम्हूं PSO ऐं शेल पेट्रोल पंप जे विच में टाइमिंग छंछर खां खमीस सुबुह 10 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं अपॉइंटमेंट ऐं वधीक मालूमात लाइ हींअर ई राब्तो करियो 03-26-22-00-440 28 जुलाई वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जेनेक्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड और GAFM के मुश्तरक तावन से पेश किया जाएगा प्रोग्राम हेल्थ इज वेल्थ आपके होस्ट आगा जब्बार खान के साथ
4: खुसूसी मेहमान
3: प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार अली शाह प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन इंचार्ज मेडिकल यूनिट 3 कंसल्टेंट फिजिशियन हेरा मेडिकल सेंटर CM प्रोग्राम फॉर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन मुला मोहम्मद माहर मेडिकल कॉलेज सखर जो बताएंगे हेपेटाइटिस BRC के बाद डेल्टा वायरस में इजाफा
4: गलत फहमियाँ जदीद इलाज और मौसर एहतियाती तदाबीर
3: सुनना मत भूलिए 28 जुलाई बरोज मंगल शाम 5 बजे ऑनली ऑन GAFM 88
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते
6: मौसम गर्मी का हो या पड़े ठंड
8: नॉनस्टॉप लॉट्स ऑफ फन
6: तबियत हो डल या छाए सुस्ती
8: मिलेगी लॉट्स ऑफ मस्ती
6: ओनली ऑन

0: lots of fun, loads of musty.
1: सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको तभी मिल सकते हैं जब आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराएंगे या फिर आप जाकर मालूमात लेंगे कि कहां कहां पर अवेलेबल हो चुके हैं ऑलरेडी, ताकि आप लोगों को लेने में आसानी हो सके। ठीक है, तो अगर लीजिए व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल लाजमी करके देखिएगा। और व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को बताते चलूं तो ये जो प्रोडक्ट्स है ना व्हाइट एश वाले, ये आजमाए हुए प्रोडक्ट्स है। मैंने जितने भी लोगों को सजेस्ट किया था, जितने लोगों ने भी मेरे आस पास जितने भी लोग हैं उन्होंने इस्तेमाल किया, तो इसका इतना अच्छा रिजल्ट मिला है ना कि सब लोग कह रहे हैं कि हाँ जी भाई जान, ये प्रोडक्ट्स तो बहुत ही कमाल के। और सबसे बड़ी बात, सबसे बेहतरीन बात कि हर एक हिसाब से प्रोडक्ट तैयार किया गया है, हर किसी का ख्याल रखते हुए। यानी कि कोई नाइट क्रीम लगाता है, कोई नाइट क्रीम नहीं लगाता है, कोई फेयरनेस क्रीम लगाता है, किसी को एक नी प्रॉब्लम है, कोई सोप लगाता है, कोई फेस वॉश लगाता है, तो हर किसी को देखते साथ ही, हर किसी की खूबसूरती का ख्याल रखते साथ ही व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स को डिजाइन किया गया है और तैयार किया गया है। अगर आप भी अपनी खूबसूरती को जरा तलाश कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि हमने कौन सा प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, तो आप व्हाइट एश का प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं जो आपको बताने लगी हूँ। अगर आप फेयरनेस क्रीम कोई भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो कि बहुत जबरदस्त किस्म की ये व्हाइट एश वालों की फेयरनेस क्रीम है। ओके जी, व्हाइट एश की जो फेयरनेस क्रीम है ना, व्हाइट एश लवली करके इसका नाम है, व्हाइट एश लवली क्रीम। और व्हाइट एश लवली क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो फेयरनेस क्रीम है ना, ये सब फेयरनेस क्रीमों से थोड़ी मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इसलिए इसको तैयार किया गया है क्योंकि आप लोगों की खूबसूरती का ख्याल रखते साथ जो है ना इसको डिजाइन किया गया था, जिसके अंदर आप लोगों को विटामिन का फार्मूला तो मिल रहा है, लेकिन साथ साथ आपको सनस्क्रीन भी एड की गई है इसके अंदर, ताकि आप लोगों को ये जो सूरज के असरात जो होते हैं ना, खतरनाक असरात, उनसे भी बचाया जाए, आपकी स्किन की हिफाजत की जाए। तो आपको खूबसूरती मिलेगी, साथ साथ आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी होती रहेगी। अगर आप कोई भी काम काज करते हैं, कामों काजों वाले इंसान हैं, तो आप व्हाइट एश लवली क्रीम का यूज तो लाजमी कीजिएगा। कोई भी जॉब करते हैं, किसी भी काम से जाते हैं, कोई भी सुबह उठकर आपको बस रेडी होना होता है, स्कूल जाते हैं या फिर पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कोई भी सीन चल रहा है आपकी लाइफ के अंदर, तो व्हाइट एश लवली क्रीम जो है ना, ये बहुत एक अच्छा काम करेगी आपकी जिंदगी के अंदर। तो व्हाइट एश लवली क्रीम का यूज आप लाजमी करके देखिएगा। इसे बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई लगा सकता है, कोई भी एज लिमिट नहीं है। और इसके साथ साथ आप लगाइए जी, मजे कीजिए, और उसके अलावा खूबसूरतियों को लूटते रहिए। और यहाँ पर व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में मजीद प्रोडक्ट जो हैं, जैसे कि व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम आती है, तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जो कि नाइट क्रीम है, जिसे उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो कि नाइट क्रीमें लगाना पसंद करते हैं, जैसे बहुत से लोगों की स्किन को नाइट क्रीमों की जरूरत भी होती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मार्केट में जिस तरह की नाइट क्रीमें आना स्टार्ट हो चुकी हैं, या फिर जैसी आपने पहले लगाकर देखी हुई जो कि आप लोगों की खूबसूरती का जो है ना वो बेड़ा गर्क कर चुकी हैं, तो आप व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, जो कि भाई नेचुरल अज़ा से तैयार की गई है। इसके अंदर आपको एवोकाडो मिल रहा है, मिल्क मिल रहा है, और एलोवेरा मिल रहा है। ये सब चीजें आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा अच्छी। तो आप व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जो कि नाइट क्रीम है, इसे आप रात के टाइम अप्लाई कर सकते हैं। और व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम आपकी स्किन को जो है ना वो सॉफ्टली बना देती है, नर्म मुलायम बना देती है, आपके चेहरे के अंदर तक जाकर आपके चेहरे की खूबसूरती को उजागर करती है, और आपको मिलता है परफेक्ट वाला हुसन। लेकिन बात यह है कि सैया, जरा आपने व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम के साथ व्हाइट एश ब्यूटी सोप या फिर फेस वॉश का भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर कुछ लोगों की आदत होती ना कि वो सोप लगाते हैं या फेस वॉश लगाते हैं, तो आप लोगों को व्हाइट एश वालों ने दोनों ऑप्शन दे दिए हैं। यानी कि यहाँ पर आपको व्हाइट एश ब्यूटी सोप भी मिल रहा है एंड व्हाइट एश फेस वॉश भी मिल रहा है। तो व्हाइट एश का जो सोप है ना, वो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम का डिटो कॉपी है, सेम टू सेम दोनों देखते हैं, भाव भी न लगना है। पर जदी तव्हां व्हाइट एश जो फेस वॉश वठण वेंदा, ऐं तव्हां इहो सोचींदा त बाबा हाणे व्हाइट एश जो साबुण सफ़ा व्हाइट एश जहिड़ो आहे, त फेस वॉश व्हाइट एश जहिड़ो छो न आहे, त फेस वॉश जेको आहे न थोरो अलॻि हुनखे तयार कयो वियो आहे। हुन जे अंदर वाइटमिन सी आहे, हुन जो जेको कलर आहे उहो तव्हांखे ऑरेंज मिलंदो, समझो था। व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जेका आहे उहो थोरो ग्रीन पैकिंग में आहे, ऐं व्हाइट एश जो जेको फेस वॉश हूंदो उहो ऑरेंज कलर में आए, तो इन के अंदर विटामिन सी आए, विटामिन सी जो कलर ऑरेंज होंदो आए। एतरी त तव्हांखे ख़बर हूंदी, सही आहे। सो व्हाइट एश जो फेस वॉश तव्हां लॻाए सघो था, क्रीमी फेस वॉश आहे, ॾाढो ज़बरदस्त फेस वॉश आहे। तव्हांजी स्किन में जेका विटामिन सी जी कमी आहे उहा पूरी थी वेंदी, तव्हांजी स्किन सफ़ा ग्लोइंग थी वेंदी। ऐं तव्हां लॻाईंदा कीअं बाबा फेस वॉश, त ॾींहं में ॿ टे दफ़ा तव्हां लॻाए सघो था, साबुण बि तव्हां ॾींहं में ॿ टे दफ़ा लॻाए सघो था, ऐं व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम तव्हां राति जो लॻायो, बसि राति जो लॻाए सुम्ही पओ। ऐं व्हाइट एश लवली क्रीम अगरि तव्हां लॻाइण चाहियो था, त व्हाइट एश लवली क्रीम खे तव्हां ॿ दफ़ा या जेमहिल बि जेॾी महिल बि तव्हांजी दिलि चवे तव्हां लॻायो, छो त त अक्सर ई थींदो आहे न असां रेडी थींदा आहियूं काॾे वञण जे लाइ त तव्हां ॾींहं में ॿ टे बि फंक्शन अची वेंदा आहिनि या तव्हां सुबुह जो स्कूल वञो था जॉब ते वञो था वरी तव्हांजो शाम जो कोई फंक्शन आहे तव्हां चओ बाबा असां सुबुह लॻाईसीं हाणे लॻाए सघूं था बिल्कुलु तव्हां लॻाए सघो था हीअ फेयरनेस क्रीम आहे त तव्हां मेकअप जे तौर जीअं लॻाए सघो था जीअं कुझु माण्हू चवंदा आहिनि त बाबा मेकअप खां बचण जे लाइ असां को सुठो प्रोडक्ट लॻायूं त फेयरनेस क्रीम हुजे जेका लाइट बि हुजे असांजी स्किन खे ख़ूबसूरत बि बणाए त तव्हांजे लाइ वाइट इज़ लवली क्रीम आहे बाक़ी अगरि तव्हां एक्नी खां परेशान आहियो दाणा तव्हांजो पीछो नथा छॾनि त पोइ तव्हां डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो इस्तेमालु करे सघो था

हले मुझे सोचा पे पांचो रेडियो स्टेशन को लंदा चौथा वाला काठो खर्चो सांबस बदु असान रेडियो हलांच लाए

बहुत प्यारा गाना एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ यहाँ पर आप लोगों के साथ बातें भी करेंगे। मैं जरा खो चुकी थी आप लोगों के फीडबैक्स की जाने। अच्छा साजिद हुसैन सुमरो हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा मुस्कान जी आप कैसी हैं? साजिद अली क्या कहते हैं? कलाम सुनाइएगा। बिल्कुल कलाम सुनाते हैं। आप हमें सुन रहे हैं DIG ऑफिस लाड़काना से, खुश आमदीद। वैसे आप वहाँ क्या जॉब वगैरह करते हैं? और उनका अलावा अली मुर्तजा कहते हैं टॉपिक पर बंदर, क्योंकि जानवरों में सबसे अजरंगी जानवर बंदर ही है, लाइक उसकी हरकतें मरी में देख आया हूँ मैं। चलिए अच्छी बात है। और अखलाक भाई कहते हैं अंसर भूरी में बटारी हलड़े, क्या बात है। और हमारे साथ हैं जी हजार भाई कहते हैं टॉपिक अदीब,

कैट बिल्ली सच्ची बताए मुश्ताक अहमद कुंभर कहते प्लीज इधर सॉन्ग लगाइएगा रंग तेरा ऐसा चले मैं देखती हूँ ये गाना मिला तो लगा लेते बकली सियाल भाई कैसे ठीक ठाक है ओके जी पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते रहिए क्योंकि मुझे पता चले कि कितने सारे लोग हैं जो पोस्ट को लाइक और शेयर करते जा रहे हैं एसन अरबानी में सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम मौलवी इस्लाम अदद कहते हैं माय फेवरेट आरजे मैडम मुस्कान लाड़का की पहचान आप कैसी है और आपकी तबीयत कैसी है उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे मैं भी आपके साथ साथ हूँ बहुत शुक्रिया एसन आप हमारे साथ साथ हैं और बताएं वाइटेज का कौन सा प्रोडक्ट लगाने का इरादा या फिर इस्तेमाल कर रहे हैं पहले से ही रेहाना खाना में सुन रही है बखर से हेलो ओके जी ये हमारे साथ हैं गुलाम फरीद बलोच सलाम आजा सिद्रा जी आप कैसी हैं और बाकी सब ठीक ठाक हैं आपका प्रोग्राम ब्यूटीफुल है सॉन्ग लगाएगा फायजा अली का बिल्कुल जी आपको फायजा अली सुनाते हैं किशोर भाई कहते हैं अगर खुदा मुझे कहे आप जिंदगी भर के लिए किसी ऐसे शख्स का इंतखाब करो

जल पाणी तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधी पियो भाजू मोहबतूं आहिनि बाबा बाइटेश ब्यूटी क्रीम जो डस्ट ॾेसि अखलाक भाई कहते नाइस व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आप कब लगा रहे हैं बताएं तो हजार खान कहते हैं कि यादें भी कितनी अजीब होती हैं ना बंद आंखों से भी नजर आती हैं कुछ लोग वाह वाह वाह वाह दर्दे दिल आ चुकी है वालेकुम अस्सलाम मैं ठीक हूँ आप बताएं स्वीटी और ये हमारे साथ हजार भाई कहते हैं समझी वयासी व्हाइट एज जी लवली क्रीम सब का बेहतरीन आए बिल्कुल व्हाइट एज जी लवली क्रीम त मतलब मां चवंदी आहियां त दुनिया जो जेको हिकु माण्हू आहे न हिकु माण्हू यानी कि जेके दुनिया में सॼा माण्हू वो एक मानू व्हाइट एज जी लवली क्रीम लगाए सभिनी जे मतलब हिसाब वारी क्रीम आहे सभिनी खे फ़ाइदो पहुचाईंदी ऐं जेका चीज तव्हांखे फ़ाइदो पहुचाए तव्हां लाज़मी वठंदा कयो

शान अली भाई आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं बहना, आपका शो आपके शो में आ गया, वेरी नाइस यू, थैंक यू भैयू जी। दर्द दिल कहती माय फेवरेट आज चंदा जानी, खिलना गुलाब का नहीं हरगिज़ कोई दलील, तुम मुस्कुरा रही हो तो समझो बहार है, कसम तो सच्ची बुझाया जाए। अच्छा किशोर भाई कहते अदा अगर अवहां जो गानों हलायण फर्ज आए तो लिसनर जो भी फर्ज आए तो हफ्ते में एक या बद दफा रिक्वेस्ट करे, बाकी रोज रोज फरमाइश करें न कपे, अगर करन था तो इंतजार।

थोड़ा टाइम पहले बड़ा ट्रेंडिंग में चला था, छा चेबो आए शायद यू चेबो जड़ी बूटी लाए छा चेबो इतनी सीधी तनिया तई वो कौन से किया है। और कहते हैं अच्छा डॉट डॉट करे तमा के व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम ना तमा के व्हाइट एज जी जेका डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब आ ना उहा लगाणी आ है। छो त जिते जिते तमा के एक्ने हुंदा है उते उते लगायो त डॉट डॉट थी वियो ना कदी कदी मुखे एक्सप्लेन करण भी ना ईंदो।

क्या करें, गाने के बाद हम जाएंगे जनाब न्यूज ब्रेक की जाने, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले हैं। वापसी जल्दी आप लोगों के पास, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारे साथ दीजिए। और आप सुन रहे हैं स्किन ब्यूटी शो, रहा है वाटी प्रोडक्ट्स के तावन से। कौन सा प्रोडक्ट लगा रही है बताएं ना, इतना देर छुटा गयो भला।

0: सिंध की मेहमान नवाज धरती,
1: जिसकी फजाओं में रची पसी है बन के मोहब्बत का सास।
2: अपना शहर अपना घर मठियारी, और मठियारी की आवाज
3: GFM 91.6।
4: It's 2 PM. This time check is brought to you by
5: Fakiri Analgesic Cream. दर्द, सोजन, वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
6: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर।
7: अमेरिकन फिलहाल वॉशिंगटन से असाजी का भी गाल बोल न थी रही है। आपने हरमुज बाबत ओमान से मुस्बत गालियों थी हुआ है ना। आपने हरमुज की सूरत हाल तब्दील ना थी। अमेरिका के जंग अमुन जो वक्त तय करण की इजाजत न डिनी वी। यूक्रेन के ईरानी जहाज से हमले जो जवाब जरूर डिनो वेंदो।

अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हथियारनि जे ज़खीरे में खोट वारनि ख़बरनि खे रद्द करे छॾियो। अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल सां ॻाल्हाईंदे डोनाल्ड ट्रंप चयो त अमेरिका वटि दुनिया खां वधीक हथियारनि जो ज़खीरो मौजूद आहे, कि दिफ़ाई सलाहियतनि बाबति गर्दिश कंदड़ ख़त न आहे। तगोन ईरान खिलाफ़ जंग में मारिजी वियल लिस्ट मां ग़ायब, जब गुज़िरियल हफ़्ते पहिरीं लिस्ट मां हटायो आहे। नाला हटाइण जो को बि कारण नाहे ॿुधायो वियो।

ॿियो ईरानी सरकारी मीडिया मूजिबि अपना हर्मुज़ जे गैर महफ़ूज़ रस्ते तां सफ़र जी 6 बहरी ॿेड़नि मां हिकु हादसे जो शिकार थियो आहे। बहरी ॿेड़ा अमेरिकी फ़ौज जे हिदायतनि ते अपना हर्मुज़ मां सफ़र करे रहिया हुआ त खेन रोकियो वियो।

ईरान यूक्रेन ॾे हथियार फराहम करे जंग को आहे असांखे मोहतात रहणो पवंदो। कोशिश करणी पवंदी त नओं मुआज़नो खुलाद मीर ज़ेलेंस्की चयो आहे त ईरान ऐं शुमाली कोरिया पहिरें ई असां ते हमला करे चुका आहिनि। उमीद ईरान जे क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार इब्राहिम अज़ीज़ी चयो आहे त ईरान पंहिंजे ख़िलाफ़ कार्रवाइनि ते जवाब ज़रूर ॾींदो आहे ऐं यूक्रेन खे बि जल्द ख़बर पइजी वेंदी।

0: सिक्योरिटी फोर्सेज या ऑपरेशन दौरान गिरफ्तार दहशतगर्द जा हिंदुस्तानी फितने बाबत छिड़काईंदड़ इंकशाफ। रुगो 25,000 ते बलोच नौजवान के कतल करण जो भी एतराफ। दहशतगर्द हबीबुल्ला चयो आहे त दहशतगर्द तंजीम पैसन जी लालच ॾेई भर्ती कयो। दहशतगर्दी जी तरबियत भी डिनी वई। हमलन बाद सुञाणप लिकाइण ऐं फरार थियण जा गुर भी सेखारिया विया। रुगो 25,000 एवज़ पंहिंजनि बलोच भाइरनि जे रत सां पंहिंजा हथ रंगिया। दहशतगर्द तंज़ीम छॾींदड़नि खे मारियो वेंदो आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: यार ही गोडन जो सूर है, चेल जो सूर तो मुझे जान ही करी छड़ी आहे। हलण वेहण हर कम दुखियो लगे थो।
4: तो पोई छा अन्या तई फकीरी एनएल जैसे क्रीम इस्तेमाल न कई थी?
3: न यार, छा वाकई फायदो करे थी?
4: बिल्कुल अदा, कुदरती जुज़न सा तैयार कयल फकीरी एनल्जेसिक क्रीम मुतासिर हंद ते जल्दी जज़ब थी। सूर सोडिय जिस्म जी नसन जी छिक ऐं अकराहट मां आराम पहुचाइण में मदद करे थी। चेल जो सूर हुजे, गोरन जो सूर, कंध ऐं कुलन जी तकलीफ़ या वर्जिश खां पोइ छिक हर हालत में बेहतरीन साथी। फकीरी एनल्जेसिक क्रीम
3: इस्तेमाल कीअं कजे?
4: रुगो मुतासिर हंद ते ॾींहं में 3-4 भेरा नरमी सां लॻाए ऐं आराम जो अहसास वठ ऐं ॿुध। जेकॾहिं उमिरि या हज ते वञण जो इरादो अथई त फकीरी एनल्जेसिक क्रीम ज़रूर पाण सां गॾु खणी वञा।
3: वाह, पोइ अॼु ई वठी ईंदसि।
4: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम अॼु ई पंहिंजे वेझे मेडिकल स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो।
5: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

माशाल्लाह ऐं हीअ जेका डॉक्टर माया इन पाण डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो तव्हां बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करे सघो था ऐं उहे माण्हू ख़ासि करे जंहिंजी स्किन सेंसिटिव आहे वरी तव्हां सोचींदा त बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ़ उन्हनि माण्हुनि जे लाइ जंहिंजी स्किन क्रीम खे तव्हां सभु माण्हू लॻाए सघो था पर स्पेशली जंहिंजी स्किन सेंसिटिव आहे उहे माण्हू बि लॻाए सो सघो था डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे लॻाइण जो तरीक़ेकार बिल्कुलु या त तव्हां राति जे टाइम लॻाईंदा यानी कि सुम्हण खां पहिरीं उन खां अलावा तव्हां वटि डी स्किन जो फेस वॉश बि अवेलेबल थी वियो आहे डी स्किन जो फेस वॉश थोरो प्रोसेस में हुयो पर हाणे उहो प्रोसेस कंप्लीट थी वियो आहे डी स्किन जो फेस वॉश बि तव्हांजे लाइ मार्केट में अवेलेबल थी वियो आहे मार्केट में सफ़ा इन थी वियो आहे त तव्हां वञो पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर सां मालूमात वठो मिले तो कौन मिले तो सही आ वठी जो नथो मिले तो तां नंबर ते राबतो करे पांजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए सको था सो डी स्किन जो फेस वॉश एॾो ज़बरदस्त आहे बाबा एतिरो ज़बरदस्त आहे तव्हां लॻाईंदा त तव्हां चवंदा बाबा ही अहिड़ा प्रोडक्ट हाणे असांखे मार्केट में मिलनि था ही अहिड़ा प्रोडक्ट आहिनि जेके भई सफ़ा प्रीमियम क्वालिटी जा आहिनि ऐं जेके तव्हां लॻाईंदा त तव्हांखे अमीरनि वारी फीलिंग ईंदी सो तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो फेस वॉश लॻाए ॾिसो जेको हाइलुरोनिक एसिड सीरम सां तयार थियल आहे जेको तव्हांजी स्किन जे अंदर ताईं वेंदो तव्हांजी स्किन खे मॉइस्चराइज़ कंदो डीप क्लीन कंदो ऐं तव्हांजी स्किन खे हाइड्रेट बि रखंदो सो तव्हां लाज़मी ट्राए करे ॾिसजो डी स्किन जो फेस वॉश ऐं डी स्किन जी ब्यूटी क्रीम जेका आहे तव्हां अगरि इस्तेमालु कयो त सिर्फ़ बाबा ॿ रातिनि जे इस्तेमाल सां तव्हांखे रिज़ल्ट ॾींदी सफ़ा वी आई पी रिज़ल्ट तव्हांखे मिली वेंदो सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम नाइट क्रीम आहे न की तव्हां राति टाइम इस्तेमालु करे सघो था ऐं हर स्किन टाइप जे लाइ आहे सो बाबा ट्राए करे ॾिसो ऐं हुन खां अलावा जेको तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराईंदा रहो ऐं डायल कयो 03-1250-25907 ऐं ॿियो नंबर आहे 03-27-38-4309 ही नंबर तव्हां डायल कजो न त कॉल या फिर मैसेज छॾियो तव्हां हुननि खे ॿुधाए त बाबा फलाणी जॻह ते तव्हांजा प्रोडक्ट कोन पिया मिलनि ऐं प्रोडक्ट मिलंदा तॾहिं त तव्हां वञी परचेस करे इस्तेमालु कंदा रहो सभ खां इम्पोर्टेंट ॻाल्हि इहा आहे त तव्हांजे करीबी जनरल स्टोर ते ही तमामु प्रोडक्ट्स मिलणु घुरजनि सो तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल करायो पंहिंजे लाइ बि आसानी थी वेंदव आस पास जे माण्हुनि जे लाइ बि आसानी थी वेंदी सो आसानियूं पैदा करण वारा बणिजो बाबा

जी यहाँ पर हमारे साथ कश्मोर से खिलाफ बलोच कहते हाई सिदरा प्ले सॉन्ग लगाई था बाबा तान जो गानों भी तावेरो पानी सीरे थे। इरम कहती ओ मेरी प्यारी दिलबर दोस्त जाने सिदरा प्लीज आज मुझे मुमताज मुलाई का सेहरा लगाइएगा सुनाइएगा। बिल्कुल सुनाते हैं आपको सेहरा। रियाज महर है जी हमारे साथ, वालेकुम असलाम कहते हैं आपको। मेरे पुखा से अब्दुल्ला महर कहते हैं असलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम असलाम प्यारे भाई। अच्छा बशीर लिगारी हमारे साथ गोट मीर खान लिगारी वालेकुम असलम सिस्टर कीअं आयो अमां जो प्रोग्राम लाजवाब आहे रोज बुधंदा आहियूं सुमोबतूं प्यारे भाण जो थैंक यू सो मच। चाचा खाले तव्हां गाने जी फरमाइश कई आहे हलाइण जी फुल कोशिश कयूं था। यासीन गुडाड़ो हमारे साथ अलाह जो शुक्र आहे अमां ॿुधायो कीअं आहियो। शाहिद बबर जो कलाम ॿुधरायो डेडिकेट बशीर लिगारी जे नाले।

हांजी ही गानो काफी टाइम का बुधू पया पर सोचा पई तो कदी हलाइंदासी फायसा जी गाने जी फरमाइश अची वही तो मु सोचो तो ही गानो बुधी वेठो था सो यासीन भा ताजो मोहब्बतू आइन ता बिनिन भावन के वेलकम चऊ था मायरा सिंह प्रोग्राम बुधे पई मायरा छाला खुश आयो सोनी के नहीं आपी जान में भी आपकी अच्छा आप हमारे साथ यदि आप ही एक बात पूछो कुछ लोग ब्लैक कलर की ड्रेस में इतने प्यारे क्यों लगते हैं क्योंकि वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर चुके हैं और जो लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो उनके ऊपर तो ब्लैक कलर जचेगा ना तो ये असल रीजन ये है कि उनके ऊपर ब्लैक कलर क्यों जचता है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत हो चुके हैं तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपके ऊपर भी ब्लैक कलर अच्छा लगे अच्छा फजीला सिंधी हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम हैप्पी मंडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे सिस्टर सिद्रा मुस्कान कैसी हो डियर जी और कहती है सलाम माय स्वीट हार्ट मॉम एंड कायनात और सब स्वीट सिस्टर्स के नाम टॉपिक के ऊपर कहती है केट ओके

जी देश के ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर सोना सोना थी वो बाबा खूबसूरती हासिल करें सभी जो हक है रमजान भाई चो अच्छा गानो बिल्कुल तांजो गानो हलाने की कोशिश क्यों था प्यारा भा और उदास लड़की हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम उदास लकड़ी चाहिए थी वेलकम टू शो और टॉपिक देती है केट ओके जी उनका अलावा उनका

हैप्पी गर्ल, बहुत शुक्रिया, आप भी हमेशा खुश रहें. वैसे तो आपका नाम ही हैप्पी गर्ल है, वैसे भी खुश रहें, मुस्कुराते रहें. अब्दुल वफा अब्दुल वही जतोई हमारे साथ हैं, भाई को वेलकम कहा जाता है. और हमारे साथ हैं जी यहाँ पर दर्दे दिल, दर्दे दिल, थैंक यू वेरी मच.

0: भाई को शेयर कीजिए। अच्छा एसन बिल्कुल आपकी पसंद का गाना भी लगाते
1: हैं।
0: अच्छा हजार भाई कहते हैं कि महबूब पोस्ट तक नहीं आता और बाबा जी ने कदमों तक का लारा लगाया हुआ है, यही तो रोला है जी, बात को समझा करें, चक्रों में नहीं पड़ा।

शहजान भाई हमें सुन रहे बलूचिस्तान से, नवीद भाई आपको वेलकम कहा जाता है, वफा शहजादो मक्सी भाई हमें सुन रहे लाड़काना से, भाईजान को प्रोग्राम पसंद आ रहा है, थैंक यू। वासव भाई ने तो जवाब वखरा ही दे दिया। हैप्पी कहती है कि आज ही डॉक्टर, हाँ जी डॉक्टर ने डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा ली है तभी वो इतनी खूबसूरत हो चुकी है। आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा के देखिएगा। अनवर भाई कहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगायो जवान ना बल्कि नौजवान थी वनो। जवान नौजवान में कड़ो फर्क है। एक्सप्लेन एस प्लीज।

अच्छा कलाक भा तव्हांखे ॻोल्हणो न पवंदो, बसि तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते वञो, उतां मालूमात वठो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज़ करे अचो ऐं तव्हां पोइ इस्तेमालु कयो, तव्हां पाण ई सुहिणा थी वेंदा। अच्छा निधड़ी कहती है टॉपिक मेरे कजिन्स, क्योंकि वो सब जानवरों से कम नहीं। ये तो अस मोमेंट हो गया। दर्दे दिल कहती है टॉपिक कैट और मेल में गदा। ओके जी ओके। अनवर भाई कहते हैं असां सिर्फ बिन रातन में अमीर थियण चाहियूं था, भली पेशकश आहे, फ़ाइदो वठो, किस्मत वरी वरी साथ न ॾींदी आहे। बिल्कुल बिल्कुल अनवर भाउ, ॾिसो केॾो सियाणो आहे। बिन रातन में बिल्कुल तव्हां अमीर थी वेंदा, अमीर न बल्कि अमीरनि वारी तव्हांखे फीलिंग अची वेंदी, फीलिंग अची वई त बसि माना ॻाल्हि ख़तम थी वेंदी। बिल्कुल तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाए सघो था, डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾु तव्हांखे डी स्किन फेस वॉश बि मिले थो। इन खे नवे सारियो बाबा, नवे सारियो, नवे सारियो भला थियो।

असांखे गानो ॿुधो, गाने सां गॾु असां वञूं था शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़, असां पोइ जल्दी वापसी तव्हां मोटी ना तव्हां ते वेठा हुजो, मां ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटा थी। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। वॉइस शो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय

0: प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
2: इट्स 2:30 पीएम This time check is brought to you by
3: Hame Bleach Cream जो deep clean करे और दे चार गुना brightness चमक ऐसी diamond skin जैसी Hame Diamond Glow Bleach Cream
4: Fakiri Neem Prickly Heat Soap जल्दी infection से बचाव का बेहतरीन जरिया है
5: Fakiri Neem Prickly Heat Soap
4: जल्दी allergy और खारिश के लिए मुफीद है
5: Fakiri Neem Prickly Heat Soap
4: झुरियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास हर रोज कुदरती निखार
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप
5: जिल्द को गहराई से साफ करने जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप
4: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए
6: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिंडीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
1: पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा

0: जब दमागी नॉर्मल ना हो तो फिर कुछ नॉर्मल नहीं होता, और यही बात इसको समझ में नहीं आ रही।
1: मेरी बच्चियों की खुशियों को नजर ना लगे किसी की, बहुत दुख देखे इन्होंने दो सालों में।
2: हो गई बर्बाद में, लग गई मेरी खुशियों को आग।

0: उसके भाई को मारा है तुमने, अब उस लड़की की खातिर हमें मार दो, मार दो हमें।
1: तुम नहीं जानती हो तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है, सारे हम तो हम खो चुके हैं, तुम्हें नहीं खोना चाहते।
2: इस लड़की को ढूंढने में उसका सुकून है, जो लड़की उसको नहीं मिलेगी खुद ही सुकून आ जाएगा उसे।

0: जी ओके गाना खोड़ सारा लिस्ट में मौजूद आन सो धीरे धीरे सब अस गाना बुधंदा वेंदासीं हिकिड़ो गानो हलायो आ जेको मंजूर सिकरानी जी आवाज़ में हूंदो शायद आई थिंक सो सो बिल्कुल बुधंदासीं हुन खां अलावा पैनल ते कुझु तव्हांजा मैसेजिस आहिनि ये मौजूद हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम प्यारी मिठड़ी कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा फुलजी स्टेशन खां फोर
1: जी
0: अच्छा फौजी भाई कहते हैं थोड़ो तांजो नालो मुके समझ में नथु अचे थोड़ो हेडा होना थिया ता पानो मैसेज चेक करे वठजो अलै छा लिखियो तव अदि असा के फौजिया सुमरो जो गानो बुधायो बिल्कुल भामा कोशिश क्यांती ताजी पसंद जो गानो हलाए वठू था और शोनी की थी आपी नहीं नहीं चुप कर और ये मौजूदी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम मौलाना इस्लाम मदद बेरिया रोड खान डॉक्टर हसीना सुमरो अदि भेण असा के गानो बुधायो फायजा अली जो बोला हन तावीज़ कराए तो के खां जुदा कयो अथन फायज़ा अली जो गानो हाणे असां ॿुधी वेठासीं इहो गानो तव्हांखे सुभाणे ॿुधाईंदासीं ठीकु आहे और हाफिज़ नईम उल्ला भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी आप कैसी हैं आप अल्लाह करे हमेशा मुस्कुराती रहें आमीन थैंक यू सो मच कहते आपने पूछा था कि क्रीम मिल रही है नहीं तो मुझे पता नहीं है चले फिर आप ऐसा कीजिएगा आप अगर जाए मार्केट तो आप मालूम लीजिएगा ठीक है अवेलेबल है तो अच्छी बात नहीं तो फिर जो नंबर आपको बताए जा रहे ना उनके ऊपर राता करके उन्हें बताइए कि फलां जगह पर आपके प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे हैं ओके जी हाफिज नईमुल्ला भाई आपको वेलकम कहा जाता है और इरम कहती हैं थैंक यू शोनी कहती हैं आपी वाह वाह क्या बात है जी ले है आपकी तो

ओके जी, बहुत प्यारा गाना सुन रहे हो, साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं। व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। पोस्ट को लाइक और शेयर करें जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया। और साथ ही साथ हैं जी हमारे साथ जवान मोहम्मद बच्चा शंबानी भाई, वालेकुम असलम। प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है उसके लिए थैंक यू सो मच। साजिद हुसैन सुमरू हमारे साथ हैं, मिठो देरों से आप हमारा शो सुन रहे हैं, वेलकम कहा।

0: अच्छा किशोर भाई कहते हैं कि जिसने ब्लैक कलर का पूछा उसको आपसे उम्मीद थी कुछ अलग कहेंगी, लेकिन आपने वही कहा डी स्किन ब्यूटी क्रीम का कहा। हमसे भाई कुछ अलग की उम्मीद मत रखें, हम आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में ही बताएंगे। क्योंकि जो हकीकत है वो कहनी चाहिए, बोलनी चाहिए। ओके जी, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं लगाई तो जल्दी लगाइए, ठीक है, वरना देर हो जाएगी। आप खूबसूरत नहीं होंगे, सारे लोग खूबसूरत हो जाएंगे। ओके, निदड़ी छाती सभी
1: जान तो सबक
0: क्या बोला मैंने
1: जान तो मापा जी छदाई दूं।
0: अच्छा अनवर भाई कहते हैं प्रोग्राम बुधण वक्त मीह भी वसे गड चाय भी हुजे समोसा भी हुजन पकोड़ा भी हुजन आए हाय छा तो फीलिंग हुंदी। यो सब थी सके तो पर सिर्फ एकड़ी बारिश जी कमी आए, सो बारिश अगर थी वने थी तो सब कुछ आसान आहे। सो अलाह कंदो मीह वसंदो बाबा तां ते टेंशन न कयो, दिल नंढी न कयो। ऐं ही आहे गानो जेको असां खे एसन शायद फरमाइश कयो।

अच्छा हिते छा था चो त नौजवान जो मतलब नौजवान मूंखे हाणे ॻाल्हि समझ में आई अच्छा रमज़ान भाई तव्हांजो गानो हलाइण जी कोशिश कयूं था बाबा न हलियो त 5 बजे वारी प्रोग्राम में हलाए वठूं था ठीकु आहे टेंशन न वठो

हाँ बाबा हर को पाण जाने वो दौर हले तो वाकई भी अरे तवा भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो बाबा कोई केंजो कोन अथव खूबसूरत रहो ए खूबसूरती हासिल कयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगायो डी स्किन जो फेस वॉश भी वठो विलेज मोहम्मद इब्राहिम संदीलो से मोहम्मद हारून संदीलो भाई हमारे साथ मौजूद है भाई जान आपको वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है।

अच्छा हजार भाई भी हमारा शो सुन रहे हैं। हजार भाई आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा ये हमारे साथ मीर तारक बलोच, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं भाई को, लाड़काना से आप हमारा शो सुन रहे हैं। पूरी संगत प्रोग्राम बुधे पई सुतवान जी सबनी जो मोहब्बत हुआ सबनी के चौथा वेलकम।

अखलाक भाई कहते हैं माँ समझो लाइट हली गई मुखे लगो माँ का हरकत है कई शायद पर न बाबा गाने जो हो फॉल्ट एकदम सत्ते में आ गई ओके और ऐसे कहते हैं कहे के चाय पीनी या जेके पीनी या वो पांजी वेटी पिए हाओ बाबा हाओ समझी वासे आई पांजी पांजी डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी वठी चाहिए ई भी तो चौ नी खबर पवे मानन के ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम नथी मिले त बाबा जी के नंबर बुधा उन्हनि खे राबितो ज़रूर करे वठो समझो था हा चाचा हिन खे छॾियोसि पर तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाए सघो था हाणे सो तव्हां लॻायो डी स्किन ब्यूटी क्रीम बिल्कुल ई दर्द दिल अभी हमारे साथ मौजूद है बाबा बारिश में त पकौड़ा ई सुठा लॻंदा आहिनि मकोड़ा न त पकौड़नि खे लोक कयोसि

छो भला गाने कहिड़ी तकड़ हुई अचण जी अच्छा ही सॉन्ग आहे जेको असांजे प्रोग्राम जो लास्ट ट्रैक थियण वारो आहे ऐं बाक़ी जेके गाना जिन माण्हुनि जा बचनि था न उहे पंजे बजे वारे प्रोग्राम में अची हलाईंदमि ठीकु आहे सो मोन सजाइजो ऐं अॼु थोरो अधा थोरी सेटिंग कई आहे सो मां पाण कंफ्यूज़ हुयमि।

कराची में वाकई थोड़ी भी बारिश थी वेंदी आहे त सॼो सिस्टम नहस नहस थी वेंदो आहे. वैसे वहां का थोड़ा सिस्टम अजीब है. मैं तो कहती हूँ भाई शाबाश उन मानन का जो उते रहन था, मतलब घूमने के हिसाब से सही आवाज घूमी फिरी मोटी चो बस पाने पाने गोट रहन वारो कमजोर है. उताई ट्रैफिक तो मुख्य लगे तो कराची जी मानन जी अध उम्र तो ट्रैफिक में गुजरी वही है बेचारा. अरे छा था चो अदा तुझी जबान में अजकल इो थोड़ो कमेंट समझ में ना आयो थोड़ो समझाए जो इन खा अलावा टाइम भी सफा खत्म थी आ प्रोग्राम जो आई तवा से मुलाकात जरी थे पई मुंजी 5 बजे वाले प्रोग्राम में. सो बिल्कुल जी 5 बजे वाले प्रोग्राम में मिलू था ई तवा ज्वाइन के था 5 बजे वाले प्रोग्राम में आई किते का गलती थी हो जे तो मा पांच ले सरो खया रख जो बाबा मोकलानी ना है सिलसिला में सा सलामत अल्लाह हाफिज़ बाय बाय लव यू ऑल.

0: पाकिस्तान की
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
2: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: Jildi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
5: Ab aap sunenge GAFM network par KTN.
6: Mail bakai chewae te saal sa sa tai America ja paigham pahunchainda hain. Filhal Washington sa asanji ka bhi ॻाल्हि ॿोल नथी रही आहे। आबना हरमुज़ बाबति ओमान सां मुसबत ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। आबना हरमुज़ जी सूरतहाल तब्दील नाहे थी। अमेरिका खे जंग ऐं अमुन जो वक़्तु तय करण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। यूक्रेन खे ईरानी जहाज़ ते हमले जो जवाब ज़रूर ॾिनो वेंदो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हथियारनि जे ज़खीरे में खोट वारनि ख़बरनि खे रद्द करे छॾियो। अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल सां ॻाल्हाईंदे डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त अमेरिका वटि दुनिया जे कंहिं बि मुल्क खां वधीक हथियारनि जो ज़खीरो मौजूदु आहे। अमेरिकी दिफ़ाई सलाहियतनि बाबति गर्दिश कंदड़ ख़बरनि में हक़ीक़त नाहे। पेंटागोन ईरान ख़िलाफ़ जंग में 18 फ़ौजियुनि जे मारजण जी तसदीक करे छॾी। 200 खां वधीक ज़ख़्मी। ईरान ख़िलाफ़ जंग में मारिजी वियल वधीक 4 फ़ौजियुनि जा नाला लिस्ट मां ग़ाइब। अमेरिकी ख़बरू इदारे मूजिब गुज़िरियल हफ़्ते पेंटागोन जंग दौरान मारिजी वियल 4 फ़ौजियुनि खे लिस्ट मां हटायो आहे। नाला हटाइण जो को बि कारण नाहे ॿुधायो वियो। ईरान आबना हरमुज़ मां गुज़रण जी कोशिश कंदड़ 6 बैरी ॿेड़नि खे रोके छॾियो। ईरानी सरकारी मीडिया मूजिब आबना हरमुज़ जे गैर महफ़ूज़ रस्ते तां सफ़र जी कोशिश कंदड़ 6 बहरी ॿेड़नि मां हिकु हादसे जो शिकार थियो आहे। बहरी ॿेड़ा अमेरिकी फ़ौज जे हिदायतनि ते आबना हरमुज़ मां सफ़र करे रहिया हुआ त खेल रोकियो वियो।
7: अहमद बेटा चलो उठ जाओ।
8: चवंदो
6: कोशिश करणो मुहाज़ न खुले। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की चयो आहे त ईरान शहरी असां ते हमला करे चुका आहिनि। उमीद आहे त हमला न वधंदा। ईरान जे क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार इब्राहिम अज़ीज़ी चयो आहे त ईरान पंहिंजे ख़िलाफ़ कार्रवाइनि ते जवाब ज़रूर ॾींदो आहे ऐं यूक्रेन खे बि जल्द ख़बर पइजी वेंदी। सिक्योरिटी फोर्सेज जे ऑपरेशन दौरान गिरफ़्तार दहशतगर्द जा हिंदुस्तानी फितने बाबति छिरकाईंदड़ इंकशाफ। रुगो 25 हज़ारनि ते बलोच नौजवाननि खे क़तल करण जो बि एतिराफ़। दहशतगर्द हबीबुल्ला चयो आहे त दहशतगर्द तंज़ीम पैसनि जी लालच ॾेई भर्ती कयो। दहशतगर्दी जी तरबियत बि ॾिनी वई। हमलनि बाद सुञाणप लिकाइण ऐं फरार थियण जा गुर बि सेखारिया विया। रुगो 25 हज़ार एवज पंहिंजनि बलोच भाइरनि जे रत सां पंहिंजा हथ रंगिया। दहशतगर्द तंज़ीम छॾींदड़नि खे मारियो वेंदो आहे। सिंध जूं सरकारी अस्पतालूं HIV पखेड़जण जो सब बणजी लॻियूं। घिम्स वलिका ऐं लांडी जे सोशल सिक्योरिटी अस्पताल बाद कराची जे सभ खां वॾे ॿारनि जी अस्पताल NICH इलाज लाइ आयल ॿारनि जी HIV में मुबतला हुअण जी तसदीक। ज़रियनि मूजिब सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां इलाज लाइ NICH आंदल ॿारनि जा टेस्ट कराइण दौरान केतिरनि ई ॿारनि में HIV जी तसदीक थी आहे। कराची जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां इलाज लाइ NICH आयल ॿारनि में HIV जी तसदीक थी आहे। ॿारनि जो अंगु 50 आहे। वज़ीर सैद मुराद अली शाह सां रोटरी इंटरनेशनल जे वफ़द जी मुलाक़ात। पोलियो जे ख़ात्मे वारे कोशिशनि में इंटरनेशनल जे किरदार जी वाख़ुसी मुहिम शुरू करण जी हिदायत। वॾे वज़ीर चयो त पोलियो जो ख़ात्मे पहिरीं तरजीह आहे। कैप्टन रथ खे सदर वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल पारां भेटा पेश। सदर आसिफ़ ज़रदारी सरवर शहीद कश्मीर जी आज़ादी। वज़ीर आज़म शत समूरी क़ौम शहीद खे भेटा पेश करे थी।
5: आप सुन रहे थे जीए वक्त पर केटीएन न्यूज।
0: मटे आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
8: यार कुछ डियन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
9: त पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करी?
8: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
9: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़ब थी सूर ऐं सोडियम आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
8: सिर्फ चेल ऐं सूर लाइ
9: न दा, असाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख्म जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
8: इस्तेमाल कीअं कजे?
9: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हा, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज़ हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।